0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जिन आदमियों के पास कुत्ते होते हैं एज पेट्स, दे आर मोर अट्रैक्टिव टू वुमेन. ये एक रिसर्च का पीस है जो मैंने रिसेंटली पढ़ा, लेकिन आई एम नॉट द ओनली वन जिसने इसे रिसेंटली पढ़ा है. आई एम गेसिंग एवरी सिंगल मैन इन इंडिया नोज दिस, और वो अपने भाई के, अपने नेबर के, अपने बेस्ट फ्रेंड के कुत्ते बोरो करके उनके साथ फोटो खिंचवा कर डेटिंग एप्स पर डाल देते हैं. मैंने जितने डेटिंग एप्स पर बंदे देखे हैं विद डॉग्स, इट्स नॉट इवन फनी. आई थिंक ऑल ऑफ द डॉग्स इन इंडिया आर ऑन डेटिंग एप्स, वेदर दे लाइक इट और नॉट, सिंपली बिकॉज हर बंदे को लगता है कि अगर फोटो में उसके साथ एक कुत्ता है तो वो अट्रैक्टिव लग रहा है. पहले दो तीन स्वाइप्स में ये सही है, गाइज लुक रियली कूल, लेकिन उसके बाद यू आर लाइक कि यार हर फोटो में ये कुत्ता क्या कर रहा है, और अगर ये कुत्ता इतना इम्पोर्टेंट है तो मेरी तो इस बंदे की जिंदगी में ज्यादा जगह होने नहीं वाली है. सो माई सजेशन टू यू गाइज इज, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ कि जब आप डेटिंग ऐप पर अपनी फोटोज विद योर नेबर का कुत्ता या अपने चाचे के भाई के बेटे का कुत्ता जब वो डाल रहे होते हैं ना, तो जस्ट कीप इट डाउन टू वन और टू फोटोज. ठीक है, हर फोटो में कुत्ते की जरूरत नहीं है. पता नहीं क्यों मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स की याद आने लगी. आई वंडर व्हाई, व्हाट इज द कीवर्ड दैट आई एम यूजिंग हियर. व्हाइल यू फिगर,
2: हियर ही वी गो अगेन, ऑथेंटिक ओरिजिनल एंड बेटर देन आवर राइट.

0: Mirchi.
1: Escabala, escabala, sacabala. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम. ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल.
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा.
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
1: Yep, Pajak.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती presented by RK Jewels. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.
7: Inefficient,
8: very complex,
9: clumsy or
10: confusion ही confusion.
11: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
15: अब मिर्ची खा.
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वैसे आपने सोच लिया था कि ऑफिस में रिजाइन कर दोगे, बट द डे यू वर अबाउट टू पुट इन योर पेपर्स, एक खूबसूरत लड़की आ गई एंड शी वाज सपोज्ड टू बी वर्किंग अंडर यू, नॉट लिटरली, और आपने अपने पेपर्स नहीं डाले. किस तरह के इंसानों, और ये सीक्रेट आप किसे बताओगे?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: द राइट आंसर इज मुझे बताओगे. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: कैसे हो आप?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ.
1: आप जरूरत, मुझे पता था आप ये कहने वाले हो. मैं कहने ही वाली थी कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि जब मैंने आपसे टेक्स्ट भी किया ना इंस्टाग्राम पर, तो मैं समझ गई थी कि आप काफी छिछोरे किस्म के इंसान हो. नहीं, आपको नहीं लगता?
3: छिछोरा तो नहीं, हाँ, मतलब जिंदगी थोड़ी रंगीन सी रही है मेरी.
1: ओह रियली? नाउ
3: सो एक्चुअली ये होता ना कि मैंने जो बताया ना कि कॉलेज के बाद भी, मतलब कॉलेज के दौरान और उसके बाद भी काफी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही है मेरी. तो मैं था रिलेशनशिप में कई लोगों के साथ. तो घर पे भी थोड़ा सा ये हुआ कि जब शादी वगैरह की बात चलने लगी ना, थोड़ा सा कि सीरियस हो गया माहौल, कि यार शादी वादी करनी है, क्या सोचा है क्या नहीं. तो मेरा ये हमेशा था कि यार शादी तो एटलीस्ट घर वालों की, यू नो, उनकी मंजूरी से,
1: कि इधर उधर कहीं पर भी हो आओ, कहीं पे भी मुंह मार लो, अल्टीमेटली तो संस्कारी बालक बनना ही है.
3: हाँ, एक्चुअली ये मेरे, हाँ, मेरे घर का एक्चुअली ऐसे सीन था ना कि थोड़ा ज्यादा ही, मतलब कि संस्कारी टाइप के है ना. तो मैंने सोचा ठीक है, उनकी मर्जी से कर लेते हैं. तो उन्होंने लड़की की फोटो दिखाई थी मेरे को, और उससे बताऊ ना आपको, बहुत सुंदर थी यार. मतलब अरेंज मैरिज में ऐसा मिलना ना बहुत किस्मत वालों का ही खेल है. तो मेरे को ऐसे मिल गई थी वो. तो मैंने कहा ठीक है, हाँ कर देते हैं. तो हाँ कर दिया, हमारी बातचीत भी हुई. और हुआ ये कि बातचीत करने के 2 महीने बाद ही रोका, मतलब ऐसा फिक्स हुआ कि भैया अब एंगेजमेंट या रोका कुछ कर लेते हैं. तो सब, मतलब सारे मेहमान आए हुए, सब कुछ सेट था. हम, मतलब मैंने भी वहां पे उससे मिला, उससे बातचीत करी. रोके के इवेंट में हुआ ये कि, मतलब मुझे ना आवाज सुनाई दी पीछे से, और वो आवाज थी मेरी एक्स की.
1: फिर
3: अब मैं ये सोचने लग गया कि भाई, मतलब जितने भी जिंदगी में जितने भी ये करे ना मैंने क्लेश, अब लग रहा है आज इसका वक्त आ गया, मेरा एंड हो गया, मेरा पाप का घड़ा भर चुका लग रहा है.
1: फिर
3: तो मैं क्या, कैसे रिएक्ट करूं, मैं समझ ही नहीं आ रहा. और वो मेरी तरफ ही आई. मैंने कहा ले गया, और आके मुझे कह रही जी जो. मैंने कहा हाँ, तो मेरी जो, मतलब होने वाली पत्नी है ना, वो कह रही साली से तो मिलो अपनी. मैंने कहा ये साली है? मतलब कि जो उसकी जो छोटी बहन है ना, 1 महीने पहले ही, मतलब जब समझ रहे हो आप हंस रहे हो, लेकिन यार मेरी सिचुएशन मेरी बहुत फट गई थी यार उस टाइम पर. सोचते हुए, मतलब गूज़बम्स हो रहे हैं मुझे कि यार,
1: मतलब आपने थोड़ा ज्यादा लिटरली नहीं ले लिया साली आधी घर वाली? आपके केस में तो मैं आधी भी नहीं बोल सकती हूँ इसको.
3: आधी नहीं, वो तो थोड़ी ज्यादा ही होगी.
1: ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, समझ गए हम, ऐसे हर चीज बोलनी थोड़ी होती है. आपको जिंदगी में, देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, ये आप ही के पापों का घर है, दैट इज राइट. लेकिन मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ, चाहेंगे आप?
3: जी बिल्कुल, मेरे थोड़े से पाप कम हो जाएंगे.
1: ये लीजिए जनाब. Dude, I feel really sorry for you. मतलब लोगों की किस्मत मैंने देखा है बहुत खराब होते हुए, बट आपका केस तो कुछ ज्यादा ही खराब है यार. It's all in the family, यार होता है ऐसे, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं.
3: ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है.
1: All the best to you, mystery caller. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई bhasar.com है, why don't you hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
2: It's 8 o'clock. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price. It's 8:30 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आज का वर्ड ऑफ द डे है पूजा, जो अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है लेकिन आप इस इंसान को टेक्स्ट करते हुए पाए गए या उसे फोन करते हुए पाए गए बाय योर गर्लफ्रेंड, जिसका नाम कनिका, रिद्धि, सिद्धि कुछ भी हो सकता है लेकिन पूजा नहीं, तो आपको ऐसी बीटी मिलने वाली है कि उसके बाद आपको मेरी डेफो जरूरत पड़ेगी. एंड माय सजेशन टू यू इज, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अपनी आंखें, दिमाग और दिल इधर उधर ना भटकाएं तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है. लेकिन दिल है कि मानता नहीं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, आई विल क्योर यू ऑफ योर इनफिडेलिटी प्रॉब्लम्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाट यू हैव टू डू, इवन दो मेरा नाम पूजा नहीं है. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तुम तो यहाँ नहीं हो, लेकिन जब मुड़कर देखता हूँ तो तुम्हें हमेशा अपने साथ ही पाता हूँ।
0: रोशी के
2: लेटर बॉक्स से।
1: मैं रोज आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में किसी ने आपके लिए चिट्ठी लिखी, अगर आपने किसी के लिए चिट्ठी लिखी, तो व्हाई डोंट यू शेयर इट विद मी, क्योंकि खतों का एक ऐसा सफरनामा शुरू किया है हमने जो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अरसे तक कंटिन्यू करेगा। आपकी चिट्ठियां कभी खत्म ही नहीं होती हैं। तो मेरे पास अभी जो चिट्ठी आई थी ऑन इंस्टाग्राम वो इतनी खूबसूरत है। इट सेज, मेरी प्यारी पायल, तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो तुम्हें यहीं पाता हूँ। बहुत अरसा हो गया कि हमारा ब्रेकअप हुए और तुमने शादी कर ली है, सुना है कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। इस दौरान मैं लुखा आफ्ताब से समझदार आफ्ताब बन गया हूँ। मैंने एक ट्रैवल एंड टूर की कंपनी शुरू की है। तुम तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारी याद में ही ये कंपनी शुरू की। याद है हमने कितने प्लान्स बनाए थे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे नाम पर एक ट्रैवल कंपनी खोलता हूँ। जानती हो इस ट्रैवल कंपनी का नाम क्या है? एक्चुअली नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, उसका नाम है पायल टूर्स एंड ट्रैवल्स। और तुम्हें पता है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे लोगों को टूर्स पर लेकर जाता हूँ। और जब भी कहीं जाता हूँ, कोई अजीब सी चीज़ देखता हूँ, कोई अनोखी चीज़ देखता हूँ, कोई प्यारी चीज़ देखता हूँ जिसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं एक फोटोग्राफ ले लेता हूँ और उस फोटोग्राफ को एक फाइल में डालता हूँ जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। इस तरह मुझे लगता है कि अगर तुम नहीं हो तो भी तुम हमेशा मेरे ही साथ हो। किसी दिन अगर मिलना हुआ ना पायल, तो ये फाइल मैं तुम्हें दे दूंगा। इसमें जितनी तस्वीरें हैं वो सिर्फ जगहों की तस्वीरें नहीं हैं, वो उन सब चीज़ों की तस्वीरें हैं।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा
3: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: कोई बंदा पेट्रोल पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
5: ओह नो,
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आज हम कुछ एक्साइटिंग और डिफरेंट करने वाले हैं. देर इज अ ब्यूटिफुल बुक कॉल्ड मदिरा जो ट्रेस करती है इंडिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग जो लोकली मेड कॉकटेल्स हैं या लोकल ट्रेडिशंस हैं, जैसे राइस वाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उन सबको डॉक्यूमेंट किया गया है इस खूबसूरत किताब में कॉल्ड मदिरा, विच इज रिटन बाय पराग शास्त्री. एंड ऑन द मिर्ची हॉटलाइन राइट नाउ विद मी इज द ऑथर ऑफ दिस अमेजिंग बुक. वेलकम टू द मिर्ची हॉटलाइन, पराग.
2: Hi Roshi.
1: How are you?
2: Very, very good. Thanks for having me.
1: It's a real pleasure.
2: Same here. In fact, मतलब definitely कहना चाहूँगा that this is one of the safest interviews, right? जो मैंने कभी भी दिया हो, right? We're trying to impress people with नींबू पानी, right? And आम का अचार flavor.
1: So
2: I think
1: So we're going to get into that as well. लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मान लीजिए मेरी तरह कोई ऐसे कपल हैं जो जैसे स्पाइस रूट था, यू नो, विच वॉज ट्रेस्ड अक्रॉस एशिया, वैसे ही अगर किसी को इंडिया में मदिरा रूट ट्रेस करना हो, जैसे कि अरुणाचल की राइस वाइन्स हैं या कोकम और महुआ के फ्लावर्स की बनी हुई एक लोकली प्रोड्यूस ड्रिंक है, तो ये मदिरा रूट क्या होगा? मतलब इस कपल को कहाँ कहाँ जाना चाहिए इन इंडिया टू डिस्कवर लोकल वैरायटीज ऑफ इंटरेस्टिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स?
2: इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू हैव, राइट? असली आप हिंदुस्तान का कोई भी कोना नहीं छोड़ सकते इस सवाल के जवाब में. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई एक रूट है जो हम फॉलो करना चाहेंगे या कर सकते हैं, राइट? सो आई थिंक द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक महुआ इज द हार्ट एंड सोल, राइट, फॉर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, टू सम एक्सटेंट ओडिशा, राइट? ये एरियाज, महुआ इज लाइक द कल्चर, राइट, द लोकल कल्चर. Next stop would be ideally Goa, right? The flavors that come out of that coastal belt like kokum, right? Your coastal citrus, right? The local flavored cashew.
1: Cashew nut ki feeni bhi banti hai na? Exactly.
2: Stuff, right? So I think that's the next stop that I would, matlab main definitely recommend karunga logon ko, right? Then from there you move to Coorg.
1: Okay.
2: Right, there are a lot of interesting stuff locally there, right? Wahan spices hain, wahan coffee hai, right? Which allows you to experience the local flavor and the type of local brews jo I think amazing hain, right? And then from there you take a flight up north, then I think in the hills of Himachal, Uttarakhand, I think amazing stuff happens out there, right? Like a local drink there, right? If I have to call out one, is made out of rice again, right? Very, very good locally, right? And then northeast is like treasure, right? You can't say anything. But say for example today, right? Matlab if somebody is looking at a possible shortcut, right, to be able to do that, there is a boutique place called the Good Craft.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: देखा
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ
2: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। इट्स 9 o'clock, मिर्ची टाइम चेक, ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। It's 9:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Tera kya hoga, Kalia?
2: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
1: Ab mirchi kha.
3: Radio Mirchi. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप किसी पर चीट कर रहे हो तो एटलीस्ट हैव द डिसेंसी ऑफ नॉट गेटिंग कॉट, बिकॉज फिर सारे पीपल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ चीटिंग एंड अप लुकिंग एक्सट्रीमली स्टूपिड, जैसा रिसेंटली अभी मेरी सोसाइटी में हुआ. वन क्यूट गाय वाज कॉट चीटिंग ऑन हिज वेरी हॉट गर्लफ्रेंड, और उसके बाद अब इतनी भसड़ है कि अगर सोसाइटी के जिम में जाओ, स्विमिंग पूल में जाओ, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जस्ट दैट. टॉकिंग ऑफ चीटिंग, क्या आपको पता है दैट देयर आर थ्री टॉप ज़ोडियाक साइंस दैट आर मोस्ट लाइकली टू चीट ऑन यू? नंबर वन पे पाइसीज है. आई नो पाइसीज आर सपोज टू बी सुपर रोमांटिक, बट वो ऑल्सो मूडी होते हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर मोमेंट के मूड में उनका किसी पे दिल आ गया, टू बैड फॉर यू सिस्टर. नंबर टू पर है जेमिनाइज, बिकॉज दे नीड सो मच अटेंशन ऑल द टाइम. नंबर तीन पर है लिब्रंस. एंड अगर आप जानना चाहते हो इफ योर पार्टनर और उनके जोडियाक साइन पर बेस्ड इफ दे आर चीटिंग ऑन यू और नॉट, व्हाई डोंट यू सेंड मी अ डीएम इंस्टा पर या एफपी पर. आई बी हैप्पी टू हेल्प यू पर्सनली. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: बबली, ये कैसा नाम है? बबली क्या नाम होता है एज अ पेट नेम फॉर समवन दैट यू रियली लाइक, यू आर अट्रैक्टेड टू, जिसे आप डेट करना चाहते हो इन द नियर फ्यूचर. सो आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप एंड ही वाज लाइक, तू इतनी स्वीट है, इतनी सारी बातें करती है, इतनी प्यारी बातें करती है, क्या मैं तुझे प्यार से बबली बुला सकता हूँ? आई एम लाइक, क्या मैं तुझे प्यार से बंटी बुला सकती हूँ? गधे, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ निकनेम इज दैट? कोई मुझे कहे ग्लिटर क्वीन, कोई मुझे कहे कपकेक, कोई मुझे कहे जूजूब, कोई मुझे कहे माय लिटिल बेरी, मुझे वो सब समझ में आता है. बबली कैसा नाम है? मुझे नहीं बनना है तुम्हारे लिए बबली कडली, ऐसे नाम मुझे ना पसंद है. एंड दे फॉर मी आर अ डील ब्रेकर. मेरे लिए इतनी अजीबो गरीब चीजें डील ब्रेकर्स होती हैं दैट इट्स नॉट इवन फनी, बट दैट्स व्हाट मेक्स मी मी. अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में, एक रिलेशनशिप में, व्हाट आर द डील ब्रेकर्स दैट कंप्लीटली मेक श्योर कि आप इस बंदे से कभी फिर से बात नहीं करोगे? व्हाट एवर योर आंसर इज, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड नो, इट इज नॉट बबली. सो व्हाइल यू फाइंड मी ऑन योर सोशल्स, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. ¿Aló? ¿Aló?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
2: बात है सर, आप तो सर पूरा बता दिए.
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: आप तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब
2: है क्या? पैसे देने पड़ेंगे. अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: It's 10 o'clock. Mirchi time check.
5: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, New Jersey's favorite jewelers. RK Jewels, best quality, best price.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab Mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वैसे आपने सोच लिया था कि ऑफिस में रिजाइन कर दोगे, बट द डे यू वर अबाउट टू पुट इन योर पेपर्स, एक खूबसूरत लड़की आ गई एंड शी वाज सपोज्ड टू बी वर्किंग अंडर यू, नॉट लिटरली, और आपने अपने पेपर्स नहीं डाले. किस तरह के इंसानों, और ये सीक्रेट आप किसे बताओगे?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: द राइट आंसर इज मुझे बताओगे. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: कैसे हो आप?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ.
1: आपको जरूरत, मुझे पता था आप ये कहने वाले हो. मैं कहने ही वाली थी कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि जब मैंने आपसे टेक्स्ट भी किया ना इंस्टाग्राम पर, तो मैं समझ गई थी कि आप काफी छिछोरे किस्म के इंसान हो. नहीं, आपको नहीं लगता?
3: छिछोरा तो नहीं, हाँ, मतलब जिंदगी थोड़ी रंगीन सी रही है मेरी.
1: ओह रियली? नाउ
3: सो एक्चुअली ये हुआ था ना कि मैंने जो बताया ना कि कॉलेज के बाद भी, मतलब कॉलेज के दौरान और उसके बाद भी काफी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही है मेरी. तो मैं था रिलेशनशिप में कई लोगों के साथ, तो घर पे भी थोड़ा सा ये हुआ कि जब शादी वगैरह की बात चलने लगी ना, थोड़ा सा कि सीरियस हो गया माहौल कि यार शादी वादी करनी है, क्या सोचा है क्या नहीं. तो मेरा ये हमेशा था कि यार शादी तो एटलीस्ट घर वालों की, यू नो, उनकी मंजूरी से,
1: कि इधर उधर कहीं पर भी हो आओ, कहीं पे भी मुंह मार लो, अल्टीमेटली तो संस्कारी बालक बनना ही है.
3: हाँ, एक्चुअली ये मेरे, हाँ, मेरे घर का एक्चुअली ऐसे सीन था ना कि थोड़ा ज्यादा ही, मतलब कि संस्कारी टाइप के है ना.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर तेरे यार की. अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि आपका यार आपसे शायद उतना प्यार नहीं करता जितना आप उससे. और अगर ऐसी बात सच है एंड यू हैव रियलाइज दैट, देन मे आई सजेस्ट समथिंग. वो जो 50 किलो भर का प्यार है ना आपके अंदर दूसरे इंसानों के लिए, शायद इट इज़ टाइम टू टर्न दैट लव टूवर्ड्स योर सेल्फ. क्योंकि पूरी जिंदगी में अगर एक इंसान है जो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा टिल द एंड ऑफ टाइम, वो आप खुद हो. और अगर आपको मुश्किल लग रहा है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव, क्योंकि ये कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल, व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. और एक बात बोलूं, ये मैं बोलती आई हूं और बोलती रहूंगी ढीठों की तरह कि जिसके पास लव है ना उसके पास सब है. एंड आई लव यू लॉट्स.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: एंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है आजकल, कंटेंट भी, रील्स भी, सॉन्ग्स भी, शोज भी, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है। लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं, और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही हैं। पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं, फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है, बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं। और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉक 20, एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट अप, गाना नंबर 20। देखो, शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है, लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है। This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai.
4: Number 20.

एतबार कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर, एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल। लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। Look, I don't know if Vijay's real life role as a chief minister नायक की तरह होगी, but man, it felt good. खैर, अब एक ऐसी आवाज जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है। From मैं वापस आऊंगा, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में AR रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं। एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज Mascara, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा। नंबर

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा
1: मिर्ची मुर्गा। हेलो
2: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी हेलो।
2: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है ऊपर से, मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
2: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं।
2: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 14.

0: तेरा हो जाऊं, और टिपिकली सचिन जिगर सॉन्ग विद जुनीता गांधी एंड स्टेबिन बेन, एंड अरिजीत के रिटायरमेंट के बाद थैंक गॉड न्यू वॉइसेस आर इमर्जिंग, वरना हर हीरो की एक ही आवाज हुआ करती थी। वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, नाउ दैट इज द रियल गेम, स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है। और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी।
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में। द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज। मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स। चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट। नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कम्प्लीट कॉमेडी फिल्म, न्यू एक्टर्स ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलू कि यार मैं सच्ची में हीरो हूँ, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, एक्शन करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस। एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया, लिटरली मेरा करियर बहुत, इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर टुडे।
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है, व्हाट इफ द ऑडियंस स्टॉप्स चूजिंग मी, व्हाट इफ दे स्टॉप लविंग मी। शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, बिकॉज फॉर वन मोमेंट वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सर्वाइव करना चाहते हैं। और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13।
2: नंबर 13।
3: तू

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
4: Number 10. Zama.

वही दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे, रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

See, that's the thing. Perfect नहीं है, polish भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए. And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्यार करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

Sizda has climbed to number 2 and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, aur aaj main aapko ek kitab ke bare mein kuch batana chahta hoon. Baat hai 2010 ki, Amish Tripathi aur unki likhi hui kitab, The Immortals of Melhua, Shiva Trilogy, uska pehla hissa. Aur jab maine ye kitab pehli baar uthai, to main bahut, bahut andar chala gaya. Aur sach keh raha hoon, bahar hi nahi nikal paya. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं। और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए। सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग। और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया, राइट्स वापस आ गए हैं। मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना, तो दुनिया आपको माफ नहीं करती। एंड अब खबर है, एंड इट्स नॉट कंफर्म येट, कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है। लेकिन ये सवाल ही गलत है यार। असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी। शिवा ट्रिलॉजी, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके। अभी तक वो बंदा आया नहीं था, लेकिन शायद अब आ चुका है। इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद। वो लोग कहाँ है, धुरंधर कहाँ है और शरारत कहाँ है, आप वो खुद देख लो। नंबर 1, आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता। नंबर 1।

0: शरारत 13 हफ्ते ऑन नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। इसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: भाई ये तो हम जानते हैं कि किशोर कुमार ने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो अपने ग्रोइंग अप इयर्स में जब वो संगीत सीखना चाहते थे तो क्यों नहीं सीख पाए? सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था और कैसे शेयर किया था।
1: चल के तुझे मैं

0: लेकिन हकीकत यह है कि जवानी में प्यार कम मिलता है और मुसीबतें ज्यादा। वो ऐसे कि मेरी जवानी ने चाहा कि मैं बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगर यानी शास्त्रीय गायक बनूं, मगर चूंकि मेरे पिताजी वकील थे और उनकी कचहरी में संगीत का कोई स्थान नहीं था, इसीलिए मैं संगीत की कोई शिक्षा नहीं ले पाया।
1: भाई बिना संगीत की शिक्षा के ये ऐसे तोप थे, शिक्षा ले लेते तो पता नहीं क्या ही ये तोप बड़ूम बड़ाम कर देती। और पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान।
2: कितने दिन तक?
1: ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सिटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: ये तो हमको पता ही नहीं था।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि बॉबी फिल्म जो ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म थी, उसमें मेन रोल बॉबी के रोल के लिए नीतू सिंह का भी ऑडिशन हुआ था, वो सिलेक्ट नहीं हुई, डिंपल कपाड़िया सिलेक्ट हो गई। भाई वैसे नीतू जी एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती थी, बट ये बड़े होने के बाद वाला जो डेब्यू होता है वो फ्यूचर हस्बैंड के साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन उसी साल फ्यूचर जेट जी के साथ इनका फिल्मी डेब्यू हो गया 1973 की ही फिल्म रिक्शा वाला में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी वाला एक और गाना सुन लेते हैं। काफी सेंसुअस हॉट गाना है ये। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

आपने जॉनी मेरा नाम फिल्म का वो गाना देखा है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इट्स अ फन सॉन्ग जहाँ पे देवानंद हेमा मालिनी को सॉर्ट ऑफ टीज कर रहे हैं, उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग खिड़कियों के द्वारा। उस घर में इतनी खिड़कियां दिखाई गई हैं भाई, इतनी खिड़कियां हैं, ऐसा सोच के लगता है कि अ वुमन लाइक हेमा मालिनी इज लिविंग देयर, इट इज सो अनसेफ। हालांकि खिड़कियां बंद करने के तरीके हैं, विंडो ब्लाइंड्स हैं, कर्टन्स हैं, खिड़की पूरी तरह से बंद हो जाए ऐसा भी तरीका है, लेकिन इतनी सारी खिड़कियां, इतनी सारी छिपकलियां घुसाती होंगी गर्मियों में, चूहे तक घुस सकते हैं। अरे चूहे क्या, डॉग्स कैट्स कुछ भी आ सकता है, कबूतर, इतनी खुली खुली खिड़कियां हैं, वो मेंटेन करनी कितनी मुश्किल हो, और रात को सोने से पहले कितनी खिड़कियां बंद करोगे। अगली बार वो गाना देखे तो ध्यान से देखे और काउंट भी करना कितनी खिड़कियां हैं, मैं भी काउंट करूंगी अगली बार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

So the other day, I watched this film called Jhooti and I fell in love with Rekha once again. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. ये ना मिड 80s की फिल्म है जब रेखा अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रही थी, तो वो बहुत फिट लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं. मुझे तो उनकी ड्रेसिंग सेंस भी इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी. तो इसमें ना उनको घर में सबसे छोटी दिखाया गया है, वो बहुत पैम्पर्ड भी है और उनको झूठ बोलने की आदत है. इस फिल्म में अमोल पालेकर, राज बब्बर ये लोग हैं. और ऐसी क्यूट हार्ट वार्मिंग सी फिल्में किनकी होती हैं? ऋषिकेश मुखर्जी की. अगर आपने फिल्म नहीं देखी प्लीज देखें. और अभी हम गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसे बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसमें रेखा को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड. खूबसूरत फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए.

तिघा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

भाई ज्यादातर लोग सुप्रिया पाठक जी को खिचड़ी टीवी शो में उनके हंसा के रोल के लिए याद रखते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही कि मेरा नाम हंसा और प्रफुल व्हाट इज एंड माय फेवरेट, मैं तो थक गई बाई चाब। नो वंडर दिस परफॉर्मेंस, दिस रोल इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन सुप्रिया पाठक जी ने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी हैं इन वैरायटी ऑफ रोल्स। आपको पता है ना, ये फेमस एक्ट्रेस दीना पाठक जी की डॉटर हैं और इनके फादर बलदेव पाठक यूज्ड टू मेक ड्रेसेस फॉर एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना एंड दिलीप कुमार। एनीवे, कमिंग बैक टू हर परफॉर्मेंसेस, इनको इनकी पहली फिल्म 1981 की कलयुग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसके बाद की जो इनकी फिल्म थी उसके लिए भी उनको यही अवार्ड मिला था। उसी फिल्म का हम यहाँ गाना सुनेंगे, फिल्म का नाम बाजार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो हेलो
3: सर वेरी गुड इवनिंग मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
2: हाँ बोलिए
3: सर। आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
3: बात है सर, आई एम सो सॉरी पूरा बताइए
2: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया
3: बता दो सर। आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
3: आई एम सो सॉरी सर। सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर, बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
2: पागल पागल है,
3: अब तो देने पड़ेंगे सर।
2: हेलो
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
2: कौन बोल रहा है?
3: नहीं सर अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे। अब तो फंस गए सर।
2: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
2: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

1975 की फिल्म जख्मी का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है ये फिल्म ताहिर हुसैन साहब ने प्रोड्यूस की थी, जो आमिर खान के फादर थे। और आमिर खान की दो फिल्मों का नाम पहले जख्मी होने वाला था, एक तो उनकी 1998 की जो गुलाम फिल्म थी वो, और फिर 2012 की तलाश, लेकिन किसी वजह से फिर जख्मी नाम नहीं रखा गया। ऐसे नाम में क्या रखा है, कहा था विलियम शेक्सपियर ने, गुलाब को आप किसी भी नाम से पुकार लें, गुलाब की खुशबू तो वैसे ही रहेगी ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। यहाँ पे नाम में काफी कुछ रखा है। सुनते रहिए मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

1976 का मास्टरपीस सॉन्ग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना है कभी कभी फिल्म का टाइटल ट्रैक। जी हाँ बहनों भाइयों, उस साल गीत माला में ये गीत पायदान नंबर एक पर था। इस गाने के लिए खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, साहिर साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट और मुकेश साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अच्छा, खयाम साहब ने ना ये गाना, इस गाने की जो ट्यून है, ये 50s की किसी फिल्म के लिए कंपोज की थी। वो गाना रिकॉर्ड भी हुआ था, गीता दत्त एंड सुधा मल्होत्रा उन्होंने ये गाना गाया था, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई या रिलीज नहीं हुई, तो वो गाना खयाम साहब के पास पड़ा हुआ था। तो जब ये कभी कभी फिल्म का म्यूजिक बन रहा था, उन्होंने यश चोपड़ा को ये ट्यून सुनाई, चोपड़ा साहब को पसंद आ गई, साहिर साहब के लिरिसिस्ट इस पे फिट कर दिए गए, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया और ये मास्टरपीस बन गया। तो सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

यार इस गाने को इसका वीडियो देखते हुए सुन लो ना, तो ये सैड सॉन्ग से कॉमेडी सॉन्ग बन जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गैम्बलर फिल्म का ये गाना जिसमें देवानंद साहब ने ऐसी मूंछें लगा रखी हैं जो बहुत फनी लगती हैं। वैसे देखो देवानंद साहब बहुत बोल्ड थे, बहुत स्टाइलिश थे, अपने लुक्स के साथ वो इतना एक्सपेरिमेंट करते थे, रिस्क लेते थे, लेकिन ये वाली मूछे ना ये बड़ी शॉर्टी लग रही है। वो जो नाटक नौटंकी थिएटर वाली मूछे नहीं होती बस ऐसे चिपका दी है, वो वैसी लग रही है। चलो ये मुच्छी वाला एपिसोड साइड रखें, तो अदरवाइज देवानंद साहब के स्कार्फ्स, उनकी जैकेट्स, उनके स्वेटर्स, इवन इन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स अगर आप देखें उनका स्टाइल ऐसे नोटिसेबल होता था। और एक और स्टाइल आइकॉन जो कि जीते जागते स्टाइल एंड फैशन की मूरत थे, फिरोज खान साहब, उनका गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

भाई एक शायर हैं हसन कमाल साहब, उनकी मैं गजल पढ़ रही थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो कहते हैं, सर उठाकर न कभी देखा कहाँ बैठे थे, गिरती दीवार का साया था जहाँ बैठे थे। सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में, हम सजाए हुए शमाओं की दुकान बैठे थे। यही शोहरत का सबब होंगे ये मालूम न था, हम छुपाए हुए जख्मों के निशान बैठे थे। लोग तो बुझते चरागों के धुएं से खुश थे, हम ही बेकार जलाए हुए जहां बैठे थे। मैं कदा शराब खाना, मैं कदा और भी तन्हाई का सामान निकला, हम की तन्हाई से तंग आके यहाँ बैठे थे। हसन कमाल साहब ने बहुत सुंदर फिल्मी गीत और गजल भी लिखे हैं, तो उनकी लिखी ये खूबसूरत गजल सुन लेते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो
2: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी हेलो।
2: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35 / 14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए की हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता
2: तो
1: दो।
2: तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
2: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा।
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं।
2: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल करूँ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पटाक।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको पता है 80s में अमृता सिंह को मजाक में मर्द सिंह भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये क्या सीन था, कौन उन्हें ऐसे बुलाता था, किसने उन्हें ऐसा नाम दिया, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये मर्द सिंह का जो टाइटल मुझे दिया गया ये मैंने नहीं दिया, ये एक बार टिंपू कपूर ने मुझे दिया था। वो मजाक में मैंने उसे कुछ नामर्द कह दिया था, तो उसका रिटेलिएशन था कि तुम तो मर्द सिंह हो, फिर ऐसा कुछ था, एक मजाक सा हो गया था और वो एक ऐसी इमेज रह गई थी कि जो रह गई।
0: चिंपू कपूर यानी कि राजीव कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर के सबसे छोटे भाई, इन लोगों ने 80s में आई थिंक एक दो फिल्मों में साथ में काम किया था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जो अमृता सिंह और राज बब्बर पे पिक्चराइज्ड है, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक थी स्मिता पाटिल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको ज्यादातर उनकी 8 फिल्म्स के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने बहुत ही बोल्ड वुमेन सेंट्रिक रोल्स प्ले किए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे भाग्य की बात है कि जब से मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, मैंने अच्छी फिल्में की हैं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे, वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था। जो रूरल बैकग्राउंड की हो या अर्बन बैकग्राउंड्स की हो, जैसे भूमिका थी, जैसे मंथन थी, जिसमें हिंदुस्तान की जो सिर्फ सफरिंग औरत ही नहीं, लेकिन उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, जो उसकी कष्ट करने की जो ताकत है, या परिस्थितियों से झगड़ने का जो उसका एक जुनून है, वो सब बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था।
0: वेल, उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया है, याद है नमक हलाल, शक्ति, ऐसी फिल्में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ब्रेकफास्ट इंदिवर साहब का असली नाम श्यामलाल बाबू राय था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये झांसी के थे और 50s से लेकर 90s तक उन्होंने बहुत अमेजिंग गाने लिखे हैं। इनका पहला जो एक गाना बहुत हिट हुआ था वो था 1951 की फिल्म मल्हार का, याद है आपको वो गाना, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। और यहाँ पर इंदिवर साहब का ही लिखा हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escava la buscava la sacabana. Grábala. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पक्का। लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Nerdy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida fala burga.
1: Nerdy, burga. Alô? Alô?
2: Sir, very good evening, my bank to photo.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
2: बात है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या?
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है.
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आर के जूल्स।
1: मंगल आरती,
0: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रिश्तों में प्रॉब्लम पर नहीं, समझ पर फोकस करना क्यों जरूरी होता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बहुत अच्छा। वीकेंड कैसा रहा आपका?
4: वीकेंड वॉज गुड, नॉट वेरी हेक्टिक।
3: सिस्टर, मुझे जैसा आप जानती हैं फिल्में देखने का बहुत शौक है, तो मॉनसून वेडिंग मेरी बहुत प्रिय फिल्म है, और उसमें रजत कपूर जो हैं वो एक तेज अंकल का किरदार निभाते हैं जो बहुत ही शोषण करते हैं, बहुत दुर्व्यवहार करते हैं एक्सेट्रा, और अंत में नसरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है वो उनसे भिड़ते हैं और सामना करते हैं, जिससे जो है ये होता है कि परिवार जो है वो टूट जाता है। और मेरे मन में ये सवाल है, कई बार इंडियन फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हम क्या है फैमिली को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उसी पे पूरा फोकस होता है, तो गलत फहमी हो, दुर्व्यवहार हो, शोषण हो, कटुता हो, ये ऐसा क्यों है कि रिश्तों को हम किसी भी कीमत पर कायम रखना चाहते हैं, फैमिली को एक साथ रखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना चाहते?
4: ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम होती है, और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, वैलिडेट करे, रिस्पेक्ट करे। वो इतना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी जो गलत चीज है हम उसका भी सहन करते हैं।
3: जी,
4: सहन करना अच्छा है, टॉलरेंस अपने आप में एक पावर है, लेकिन कई चीजों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जैसे फिजिकल अब्यूज है या डोमेस्टिक वायलेंस है, या आपको कोई अनएथिकल होने के लिए कहता है, वर्क प्लेस पर आपको कोई गलत करने के लिए कहता है, वहां पर हमें उस सिचुएशन का सामना करना होता है।
3: जी,
4: कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार किसी चीज का सामना करना होता है लेकिन हम सहन करते हैं, वो गलत है, और वो इसीलिए क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए या हम चाहते हैं कि समाज में हमारी एक इज्जत बनी रहे, उसके लिए कभी कभी हम अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हम अनजाने में गलत चीजों को अपनी एनर्जी दे रहे हैं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये हमने हाईवे फिल्म में भी देखा था, जहाँ पे आलिया भट्ट को ना अपनी पुराने बचपन में हुए जो शोषण होते हैं उसके बारे में याद आती है, तो फिर वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो जाती है। और मेरा सवाल यही था कि सामना करना एक बात है और सहन करना एक बात है, लेकिन ऐसा क्यों है कि परिवार को बिखरने से हमें ज्यादा डर लगता है, लेकिन हर सदस्य की जो भलाई है और सुरक्षा है उस पे फोकस नहीं होता? ये इस बात पे क्यों टिके रहते हैं?
4: सी, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ हुआ किसी मोमेंट पर, लेकिन हम बहुत बाद में उस चीज को कन्फ्रंट करते हैं। तब तक हम उसको अंदर ही अंदर, जैसे वो बीज है, अब वो है तो गलत बीज ना,
3: लेकिन उसको पानी देते रहते हैं,
4: तो वो नफरत और रिवेंज के अंदर बदल जाते हैं। हमें किनारा करना होता है किसी एक व्यक्ति से, कई बार किनारा करना पड़ता है,
3: जी बिल्कुल,
4: लेकिन अंदर जब रिवेंज, बिटरनेस सब हो जाता है तो हमें लगता है सारा परिवार ही दोषी है, परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और कई बार ये सच भी होता है, जो हमने पहले भी कहा कि बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि समाज क्या कहेगा। और फिर ये जो हम कई बार कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग
3: क्या कहेंगे लोग,
4: ये रोग है, डिजीज टू प्लीज। मना हम समाज में रहते हैं और समाज के जो नियम है उसको फॉलो करना होता है, लेकिन कभी कभी अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके, बच्चों की खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके गलत को सहन करना क्योंकि समाज हमें एक्सेप्ट करे, वो चीज राइट नहीं है। तो आपके साथ कुछ होता है, आप कन्फ्रंट करें। होता क्या है, हम बोलते नहीं है लेकिन उसको अंदर ही अंदर सोचते जाते हैं। जितनी बार सोचते हैं, रीलिव करते हैं, उतनी बार उसका ब्लेम किसी दूसरे पर डालते हैं। पेरेंट्स ने मुझे बचाया नहीं, पेरेंट्स ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। समटाइम्स दे आर ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट, उनको भी पता ही नहीं होता है।
3: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: एम आई कंफर्टेबल? ये सवाल क्यों सेल्फ अवेयरनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है, आइए समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर, हैदराबाद में ना एक महिला बैंकर हैं, पहले एचआर प्रोफेशनल थी, तो वो किसी अखबार में शायद मैंने पढ़ा था इस बारे में. तो उनकी पिताजी की मौत हो गई थी, उसके बाद वो लिखती हैं कि मेरी एक और बहन है और हम दोनों को हमारी माँ ने अकेला ही पाल पोस के बड़ा किया, तो कृतज्ञ बहुत हैं, लेकिन अब कमाने वाली मैं ही हूँ. महिला बैंकर है, लिखती हैं कि माँ ने पाल पोस के तो बड़ा किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे एक लड़का पसंद आने लगा, लेकिन मम्मी को उससे थोड़ी सी वो होने लगी कि भाई अब तो एकमात्र जो साधन है कमाने का वो कहीं नहीं चला जाए. तो उन्होंने क्या किया, उनकी माँ ने उसकी छोटी बहन से उस लड़के की शादी कर दी. तो इससे ये जो महिला बैंकर, इनको बहुत गुस्सा आया और वो बिल्कुल उसने किनारा कर लिया, घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, शहर भी जो है वो शिफ्ट कर लिया, दूसरे शहर में जाके रहने लगी, और अब अपनी माँ को एक रकम भेज देती हैं घर खर्च के लिए, और अपने सारे रिश्ते जो उसने तोड़ लिए. इस केस में कौन सही है कौन गलत है उस पर हम नहीं जाना चाहते. उनको बहुत इस पर बैकलैश मिला, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर छोड़ के जाना और एक स्वतंत्र जीवन चुनना, उसे स्वार्थी क्यों माना जाता है?
4: देखो, ये हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें हम सही गलत नहीं कह सकते. अगर कोई इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है, उसको कंफर्टेबल है, और वो अगर उसकी चॉइस है, सो इट इज ओके. पर आप कहें कि सब उस चीज को एक्सेप्ट करें, बैकलैश का मतलब क्या है कि कई लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. जब भी हमारे समाज में कोई चीज पहली बार होती है, हमारे मर्जी के अनुसार नहीं होती, हमारे को वो चीज राइट नहीं लगती, तो बैकलैश तो आजकल सोसाइटी में, पहले तो कम्युनिटी से होता था, आज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कंट्री से उस कंट्री से अनोनिमसली सब करते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हैं, आर यू कम्फर्टेबल, आपको ठीक लगता है. व्हेन यू डू राइट, देयर इज ऑलवेज पीस आफ्टर दैट. ये तरीका मेरा है फाइंड आउट करने का. कई बार हम कुछ कर लेते हैं पर अंदर से कंफर्टेबल नहीं
3: होते. हाँ.
4: दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं, बिटरनेस है, नफरत है, कोस रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो फिर आप ही कंफर्टेबल नहीं है उस चीज से. उस समय पर सोचना है कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है या कुछ और करना है. अपने डिसीजंस उस पर बेस नहीं करने के बाकी सब क्या सोच रहे हैं, पर क्या वो मुझे कंफर्टेबल है, एम आई फीलिंग पीसफुल, एम आई कंफर्टेबल, वो देखना ज्यादा जरूरी है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: खुद को हर बार प्रूव करना क्यों जरूरी नहीं होता और साइलेंस का पावर क्या होता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस केस में तो महिला ने लिख के भी भेजा था कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, इस वजह से मैं अलग हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार भी दोषी है या माँ जो है एक तरह से शायद उनके साथ गलत हुआ इसलिए उन्होंने ये करने की कोशिश की। तो हमें एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ता है कि हमने ये काम किया, हम अलग हुए अपने परिवार से और हम इन पीड़ाओं से गुजर रहे थे।
4: हम एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो हमें एक्सेप्ट करे। एक्सप्लेनेशन देने में भी कोई हर्जा नहीं है, हर्जा
3: लेकिन
4: होता
3: जीना
4: है।
3: मुश्किल कर देते हैं ना कहीं रोज बोलते रहते हैं कि तुम ऐसा हो, तुमने छोड़ दिया अपने परिवार को, तुमको अपनी माँ की चिंता नहीं है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तो आदमी को लगता है यार मुझे थोड़ा यहाँ पे शांति भी चाहिए।
4: सी देखो, एक्सप्लेनेशन देने में कोई हर्जा नहीं है, पर सिद्ध नहीं करना चाहिए।
3: हाँ,
4: सिद्ध और जिद करने में ऐसा लगता है कि हम गलत हैं। जब हम बहुत ज्यादा उसमें जाते हैं ना, वी कीप ट्राइंग टू प्रूव आवरसेल्फ, वी डोंट नीड टू रियली प्रूव आवरसेल्फ। देखिए, कुछ भी आप समाज में जब कुछ नया होता है ना हट करके, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। लेकिन जब वही व्यक्ति थोड़े समय के बाद सफल हो जाता है, जिसमें 5 साल 10 साल लग जाते हैं, 15 साल भी लग जाते हैं, वो सफल हो जाता है, फिर वही लोग जो रिजेक्ट करते थे, वही लोग जो इंसल्ट करते थे, वही लोग जो कुछ कुछ कहते थे, वही आपसे एडवाइस मांगने आते हैं, वही आपको अच्छा अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस हर समय उस बेस पर नहीं ले सकते कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो राइट है कि नहीं। अगेन, दो चीज़ें हैं, एक है आप वो कर रहे हैं

0: हैं जिसमें सबकी एक्सेप्टेंस है, पर हो सकता है वो राइट ही नहीं है। हम आज अल्कोहल लेते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, वाह करते हैं, इट इज अ वेरी, बट वो चीज ही राइट नहीं है। वो चीज ही राइट नहीं है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। और एक है कि अकेला खड़ा होना पड़ता है, मैं अकेला, हाँ सबके खिलाफ, बट मुझे पता है कि मेरा कर्म सही है, एंड इवन इफ यू हैव टू स्टैंड अलोन इट्स ओके।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या कभी कभी फैमिली से डिस्टेंस बनाना गलत होता है या ये भी हीलिंग का एक हिस्सा हो सकता है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मुझे आपसे यही बात पूछनी थी कि इज इट अ सिन टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली अगर मैं अलग हो रहा, क्योंकि इसमें हिम्मत बहुत लगती है। अपने परिवार का जो पूरा सेटअप है, कंफर्ट है, इतने सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारा हमको वहाँ पे शेल्टर करते हैं, वो पूरा सेटअप छोड़ के अलग रहना, इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार हमें स्वार्थी गुनहगार भी ठहरा दिया जाता है कि तुमने अपने परिवार को छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, प्रेशर बहुत रहता है। तो एक तरह आप कह रहे हैं कि देखो, परिवार के लिए समाज क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सही लग रहा है या नहीं वो हमें सोचना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी लगता है ना कि शायद हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए हमें बाहर निकलना जरूरी है, तो उसमें एक गिल्ट फीलिंग कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम उनको छोड़ के आए। तो क्या इतना गलत है ये?
4: इंटेंट देखना पड़ता है। आज एक आर्मी वाला है, वो भी तो छोड़कर जाता है अपने पेरेंट्स को,
3: उसकी स्थिति अलग है।
4: वही तो मैं कह रही हूँ कि ये चीज देखनी पड़ती है ना, कि उस समय पर जब हम उनको छोड़ रहे हैं तो हम किस लिए छोड़ रहे हैं? हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं? एक आंसर हर जगह फिट इन नहीं होगा। एक है कि परिवार है तो परिवार में रोल तो होता है। आज बुजुर्ग माता पिता हैं तो आपका फर्ज भी होता है उनका ध्यान रखना। पर कभी कभी सिनारियो अलग होते हैं, जैसे अब ये मिलिट्री का सिनारियो है, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब के कारण आपको कहीं जाना पड़ता है, आप एक्टर हैं, आपको उतने दिन जाना पड़ता है, तो आप फिर ये सोचते हैं, उसमें गिल्ट में जाने के जगह ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हर बार वो पॉसिबल भी नहीं होता सिनारियो, हम चाहें उनके साथ रह लें। आज आप देखें, कई बार हम देखते हैं कि वही पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चे बहुत मेहनत करके, क्योंकि पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन अब उनको जो नौकरी मिलती है वो मिलती है उनको मेट्रो सिटीज में है या विदेश में मिलती है। अब पेरेंट्स ने तो पढ़ाया था ना, उन्होंने भी मेहनत करके पढ़ा, अब उनको अगर एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्यों नहीं लेंगे उस अपॉर्चुनिटी को। तो आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जहाँ इंटेंट को समझना पड़ेगा कि बच्चे का भाव नहीं है पेरेंट्स को छोड़ना, दोनों में फर्क है। एक है आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट वॉन्ट टू टेक केयर, अब मैं, मुझे आपकी कोई फिक्र भी नहीं है और मैं आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहता। और एक है कि ये सर्कमस्टेंस है, इस समय पर ये सिनारियो है, इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्या उनको अपने पास बुला सकते हैं, कोई केयर टेकर रख सकते हैं। उसमें हमारे मन में उनके प्रति कुछ नहीं होता, केवल एक्सटर्नल चैलेंज होता है। और कई बार तो हम घर में ही इकट्ठे होते हैं लेकिन मन के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट और दूरियां हैं। मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और दूरियां नहीं है ना, तो कई बार दूर रह करके भी आप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकते हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मॉर्गेज ढूंढने या रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग में खा रहे हैं मात, या प्राइसिंग और ऑफर में कोई बता नहीं रहा है हेल्प का हाथ?
1: No worries. सुनिए रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ. रॉक द रियल एस्टेट फील्ड विद आदर्श लाल. अगर रियल एस्टेट में आपकी इंटरेस्ट है तो ये शो मस्ट है.
0: रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ एवरी ऑल्टरनेट थर्सडे बिटवीन 4 एंड 5 पीएम ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो मिर्ची 92.7 पर. कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
2: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लाइफ में प्रायोरिटीज क्लियर होना क्यों कंफ्यूजन को कम करता है और क्लैरिटी लाता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद है कि मैं कलकत्ते में था, मेरे माता पिता कलकत्ते में रहते थे और मुझे कलकत्ता छोड़ के नहीं जाना था, लेकिन किसी कारणवश मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ, मैं दिल्ली गया और फिर एक समय पे मुझे पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार हैं, तो मैंने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए मैं वापस कलकत्ते जा रहा हूँ, और मेरे CEO ने कहा ठीक है भाई तुम आ जाओ, लेकिन उसके 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने कहा कि अब तुमको बम्बई आना पड़ेगा, और मैं बहुत दिनों तक उसको टालता रहा लेकिन आना पड़ा। मैंने अपनी माँ से भी बात की तो माँ ने कहा कि तो चले जाओ, और मेरे बहुत अच्छे बॉस थे, उन्होंने कहा देखो अभी तो माँ की हालत ठीक है तुम आ जाओ। मैं बम्बई आ गया और आने के 2 साल बाद ही मेरी माँ का निधन हो गया। अब वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं अगर कलकत्ते में रहता, उनके पास रहता, उनके आखिरी दिनों में सेवा कर पाता, और ये कई लोगों के साथ होता है, कई परिवारों के साथ होता है, ये गिल्ट जाता नहीं कि मैं छोड़ के निकल आया, उनके भाव में उनकी तरफ से शायद ऐसा ना रहा होगा, उन्होंने अपने बड़े प्यार से भेजा, मैं जाता था भी रहता था, लेकिन उनके आखिरी दिनों में उनके साथ नहीं रह पाना, ये गिल्ट हमेशा रहता है। तो आपको एक जिंदगी चुननी भी है, आपको अपना परिवार का ख्याल भी रखना है, आपको पैसे भी कमाने हैं, और कहीं ना कहीं ये गिल्ट ना हो कि आप परिवार वालों के साथ तब ना रहे जब वो उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसका संतुलन कैसे बनाए?
4: देखिए, किसी ने शरीर छोड़ना वो तो निश्चित होता है ना, डेथ और बर्थ, तो आप इधर थे और उसके पीछे से उन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी ये बात कि हम उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो हर एक के पर्सनल चॉइस है, उसमें राइट रॉन्ग नहीं है। आप आ गए तो भी कुछ गलत नहीं है, पर अगर आप नहीं आते और थोड़ा समय और उनके साथ स्पेंड करते तो भी गलत नहीं था। प्रायोरिटी, कईयों के लिए उस समय प्रायोरिटी होती है कि उनकी जिम्मेवारी है और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, बच्चे हैं, परिवार को चलाना है, उतना धन कमाना है, उसके लिए ऑप्शन नहीं था, आना ही था। किसी के लिए उस समय प्रायोरिटी होती है कि नहीं, मैंने भले अभी इस समय मुझे धन नहीं है मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे तो इनके साथ ही समय बिताना है, नहीं तो मुझे रिग्रेट रहेगा लाइफ में, मुझे ये रिग्रेट नहीं चाहिए, मुझे अपना ये समय उनके साथ ही बिताना है, इवन इफ आई अर्न लिटिल लेस इन दीज फ्यू ईयर्स इट इज ओके, मनी इज नॉट राइट नाउ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्या मेरी प्रायोरिटी है उस समय पर, उस सीन में, उस सिनारियों में क्या मेरी जिम्मेवारी है, उसको देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस समय हम डिसीजन ले रहे हैं वो मेरी चॉइस है, उसमें ये फायदा था इसलिए मैंने ये चूज किया, और फिर ऐसे अपने से बात करके अपने को हल्का करना चाहिए।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब हम खुद को बेटर समझने लगते हैं तो इसका असर हमारे बिहेवियर पर भी पड़ता है। ये शिफ्ट कैसे आता है, आइए मिलकर जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर कहते हैं कि हाइंडसाइट में सब सही लगता है, तो उस समय मैंने डिसीजन लिया और उस समय मुझे सही लगा हमने किया, लेकिन कई बार आप अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि काश मैंने ये डिसीजन उस समय नहीं लिया होता या ये डिसीजन ले लिया होता, तब दिक्कत होती है। दिक्कत वरना नहीं होती, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
4: हमें से कोई भी पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, और हमें से कोई भी नहीं है जिसने सारे डिसीजन राइट लिए। We're all work in progress. उस समय जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो हमें बिल्कुल राइट लग रहा होता है। हमारी जितनी इंटेलेक्चुअल इमोशनल कैपेसिटी है, हम वो डिसीजन इसलिए नहीं लेते कि हमें गलत लग रहा है और हम ले रहे हैं। हमें वो सच में जेन्युइनली राइट लग रहा होता है। बाद में अगर हमें लगता है कि वो राइट नहीं है, मे बी नाउ शायद आपके मदर के साथ ऐसा हुआ, आपके फादर के साथ आप डिफरेंटली कोई डिसीजन चूज करते हैं, इट इज ओके। व्हेन वी नो बेटर वी डू बेटर, लेकिन इग्नोरेंस इज नॉट अ क्राइम ना। हम उस चीज में, और कई बार ऐसा होगा कोई ब्लेम नहीं कर रहा है,
3: लेकिन मन में वो बात चल रही है,
4: वो हम कर रहे हैं क्योंकि शायद हमारे मन में या दिल थी कि आई शुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद माय फैमिली। अगर आपको ऐसा लगता है और आपने रियलाइज किया कि इस चीज का एक रिग्रेट आपके मन में रह जाता है, सो मे बी विद द अदर पेरेंट वो चीज आप रिपीट नहीं करें। विद द अदर पेरेंट आपके पास फिर चॉइस है कि आप कितना समय उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ये रिग्रेट कईयों के मन में रह जाती है, लेकिन अगेन आई विल से कि हर एक के पास वो ऑप्शन नहीं होता। तो क्या कर सकते हैं, रोज फोन पर बात कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप कभी भी हमें फोन करें, आपको लगता है कि उनको हमारी जरूरत है, तो काम छोड़ करके भी जा करके उनको प्रायोरिटी बना सकते हैं। व्हाट इज पॉसिबल, समटाइम्स जो पॉसिबल है वो भी नहीं करते, उसका गिल्ट ज्यादा होता है। वो फोन उठा सकते थे पर नहीं उठाया, दो दिन की छुट्टी ले सकते थे पर नहीं ली, थोड़ा सा आधा घंटा ज्यादा बात कर सकते थे। समटाइम्स पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं रिपीटेड भी वही बात करते हैं, उनका फोन देखकर ही आपको पता होता है वो क्या बात करने वाले हैं। आप एक बात उनको कई बार समझाते हैं, वो बच्चे जैसा हो जाते हैं। हम बच्चे थे तो हम भी तो एक ही बात बार बार करते थे, तो वो कितने प्यार से एक ही बात सुनते थे और एक ही बात हमको समझाते थे। आज वो बच्चे बन गए, अगर एक ही बात वो 50 बार भी करते हैं और अगर हम सुन लेते हैं और एक्नॉलेज कर लेते हैं एंड दे फील दैट कोई मुझे सुनता है, कोई है मेरा अपना, तो ये भी तो सेवा है ना। फिजिकली हाजिर होना सेवा नहीं है, लेकिन इमोशनली प्रेजेंट होना भी अपने आप में सेवा है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Namaskar. आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विशाल सेठिया और ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर मुक्ति हैं वो लिखती हैं कि भक्ति योग की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, रोज जप करने का सोचती हूँ पर हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। जब सब कुछ समझ में आता है तो फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पाती, और क्या अभी भी जागरूकता मेरे अंदर कम है? अंदर ऐसा क्या है जो जाग नहीं पा रहा?
3: लगन की कमी है
2: जी।
3: जब किसी चीज के प्रति आपको बहुत लगन होती है तो आप वेट करते हैं वो करने के लिए, तो केवल समझ काफी नहीं होती कई बार। वो जब किसी चीज की लगन लग जाती है ना, तो फिर आपको दिल होती है करने की, मजबूरी से नहीं आप करते, आप उस चीज को दिल से करते हैं। और इसीलिए जब वो लगन लगने के लिए थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो इनिशियली अगर हम कुछ भी करते हैं, सो सेट अ वेरी स्मॉल गोल फॉर योरसेल्फ,
2: राइट,
3: क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देगा। मे बी आप 1 वीक का गोल सेट करें कि मुझे 1 वीक में एवरी डे 1 आवर के लिए करना है, और करना ही है। उसमें आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप बहुत लॉन्ग टर्म गोल बना लेंगे तो कई बार मुश्किल लगता है। जस्ट डू इट फॉर 1 वीक और उसमें कैसे भी मुझे करना ही है, वो आपको एक एक्सपीरियंस देगा,
2: राइट, और उससे आदत बनेगी। और जरूरी नहीं कि एक हफ्ते
3: उससे आपको दिल होगी, आदत तो अभी भी नहीं बनेगी, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है आपको मोटिवेट करेगा।
2: फिर एक हफ्ता
3: जैसे हम एक्सरसाइज के लिए सोचते हैं करेंगे, हम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, हम करेंगे करेंगे करेंगे, होता नहीं है। फिर देन समटाइम्स वी थिंक कि नहीं, 1 मंथ की मेंबरशिप लेते हैं, से 1 मंथ करके देखते हैं, रिजल्ट आता है, यू फील फ्लेक्सिबल, यू फील लाइट, यू फील कंफर्टेबल, देन यू वॉन्ट टू कंटिन्यू,
2: राइट।
3: तो जब तक आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लगन बैठती नहीं है।
2: छोटे छोटे स्टेप्स में करिए, हफ्ते भर में,
3: स्टेप्स में करिए,
2: 1 घंटा नहीं तो 20 मिनट तो बैठिए, उसके बाद धीरे धीरे आपकी आपको जब बेनिफिट मिलेगा तो करोगे।
3: देखो ये हर चीज में होता है। मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं हम सुबह उठना चाहते हैं, हम उठते भी हैं पर हमारे से होता नहीं है। आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करते हैं जो आप पहले नहीं करते थे, वो डिफिकल्टी होती है, वो एकदम नहीं होगी। गिव अप नहीं करना होता। इफ यू नो दिस इज राइट, आपको पता है ये सही है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये प्राप्ति है, वो टेस्टेड है, तो फिर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे, पहले डिफिकल्ट लगेगा, फिर इजी हो जाएगा, फिर वो नेचुरल नेचर बन जाएगा।
2: बहुत अच्छी बात है। मुक्ति जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, और खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है। तो बस याद रखिए और आगे बढ़िए
3: जी।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Yeah.
1: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
2: Good morning, guys. This is your girl Priscilla on Mirchi Mornings, जहाँ पर caffeine हो सकती है कम लेकिन drama होगा full on. और देखो भाई, Indians in America are built differently. Mom जो है वो कहती है बेटा jacket पहनकर बाहर जाना, और uncle लोग shorts पहनकर Costco जा रहे होते हैं, like they are roaming on a Goa beach. देखो आज के time में ना सुबह सुबह office जाना भी खतरे से खाली नहीं है. सुबह सुबह 8:01 पर boss का email आता है कहते हुए gentle reminder. यार मुझे तो ना इसमें पैसिव अग्रेशन दिखाई देता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो मुझे फटाफट से फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर जल्दी से भेजो अपने मैसेजेस 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. लेकिन लाइफ में फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स अगले कुछ घंटों के लिए मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. क्योंकि कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन बन जाता है. फिलहाल बैक टू बैक मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
13: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग क्यूटीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और फ्रेश कप ऑफ चाय गॉसिप के साथ थोड़ी सी हिस्ट्री लेकर आई हूँ। सो लेट्स रिवाइंड। सबसे पहले चलते हैं 1498 में पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा रीच्ड कोझिकोड on India's Malabar coast and just like that Europe discovered the OG spice route. Phir 1873 mein Levi Strauss and Jacob Davis patented blue jeans with copper rivets. 1875 mein 17 countries signed the Metre Convention in Paris. This helped standardize measurements worldwide. And today also reminds us of history's darkest chapter. In 1940, the first prisoners arrived at Auschwitz, the Nazi concentration camp in occupied Poland during World War II. A solemn reminder of why humanity, compassion and standing against hate will always matter. और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी है। इट्स कॉल्ड वर्ल्ड बी डे, यानी कि बी डबल ई डे। सो प्लीज टुडे इफ यू सी बीज बी रिस्पेक्टफुल। And फिलहाल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दे आर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: This is your girl Priscilla on Mirchi Mornings. यहाँ पर प्लेलिस्ट हॉट होती जा रही है भाई साहब, लेकिन अभी तापमान कितना हॉट या कूल है, लेट्स फाइंड आउट. राइट नाउ इट्स अराउंड 74 डिग्रीज फारेनहाइट एंड मोस्टली क्लियर आउटसाइड. लेकिन डोंट लेट दिस इनोसेंट मॉर्निंग फूल यू, क्योंकि बाय 3 PM आफ्टरनून पार्टली क्लाउडी स्काइज होने वाले हैं, हमारी लाइफ में अनवॉन्टेड वर्क मीटिंग्स की तरह घुस जाने वाले हैं. टुडेज टेम्परेचर्स आर स्विंगिंग बिटवीन 68 डिग्रीज फारेनहाइट टू स्पाइसी 92 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन होने वाला है 93 डिग्री फारेनहाइट के आसपास. एंड इफ यू आर वंडरिंग कि आज के दिन घर से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, तो मैं बता दूं देयर इज अ हीट एडवाइजरी इन इफेक्ट टिल 8 PM ईस्टर्न टाइम. सो प्लीज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अपने आप को अच्छे से कवर करके बाहर निकलना. वाटर पियो, कोकोनट वाटर पियो, इवन फिल अप योर स्टैनली कप विद कोल्ड ड्रिंक्स. देखो पिछले 24 घंटों में तो कोई बरसात नहीं हुई थी, लेकिन ये 24 घंटे देखने वाले हैं 7 mm की बरसात. एंड इफ कम्पेयर टू येस्टरडे ऑलमोस्ट सेम टू सेम टेम्परेचर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. येस्टरडे पीक्ड एट 96 डिग्रीज फारेनहाइट और आज जाने वाला है मैक्सिमम 92 डिग्रीज फारेनहाइट तक. सो वेदर यू आर हेडिंग टू वर्क, स्कूल ड्रॉप ऑफ या फिर बस एसी के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंजॉय कर रहे हो, मुझे अपने साथ में रखो. मेरा नाम है प्रिसला. मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुम सुन रहे हो गर्मा गर्म मिर्चीदार बैंगर्स जो आने वाले हैं अब, और तुम जाने वाले हो मिर्ची प्रिस पर. दैट इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था
2: शशि. वो मैनहट्टन है.
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी.
2: टैन मतलब वो धूप की छाप.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर हम अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गूगल जस्ट गेव इट्स सर्च बॉक्स द बिगेस्ट मेकओवर इन 25 इयर्स। यप, योर लेट नाइट सिम्टम्स आफ्टर ईटिंग लेफ्टओवर बिरयानी सर्चेस आर अबाउट टू बिकम इवन स्मार्टर। गूगल सर्च विल नाउ रन ऑन जेमिनाई 3.5 फ्लैश। Plus, the AI responses are becoming more conversational. Basically, Google is slowly becoming the over-smart friend who always has all the answers. And number two, Russia's ruble is now the world's best-performing currency against the US dollar this quarter. According to reports, it jumped nearly 12% since April. And finally, number three, Neymar got emotional after being called up for Brazil's 2026 FIFA World Cup squad. The football star shared a video cheering up with his girlfriend Bruna by his side after a long recovery from injury. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mujhse connect karna chahte ho to dhundo Instagram par aur X par mera handle name Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par drop kar apne messages 9033 Mirchi par, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.
2: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vida para la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो. मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा.
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Did you know many communities across NJ-12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ-12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ-12. Rooted in NJ-12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election day, June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
15: Listener MI, back to back gana sunega. Back to back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
6: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
7: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
8: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
9: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my birthday babies. I am Priscilla, tumhare saath mein sun rahe ho Mirchi Mornings. And if it is your birthday today, happy birthday to you, yaar. Jadoo ki jab bhi tumhe aur sare khushiyan tumhari life ki puri ho jaye. And aaj ke din, may your coffee stay strong and your boss stay offline. And your relatives don't bother you that much. And guess what? You share your birthday with some seriously legendary people. First up is N.T. Rama Rao Jr., aka Junior NTR. And then we have Ek Naam Wali Celebrity, the iconic Cher. And also born today is Busta Rhymes. And for the period drama lover, Josh O'Connor is also celebrating today. एंड आज जिनका बर्थडे है वो मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ साथ टैलेंटेड होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, स्टाइलिश होते हैं एंड प्रोबेबली हर जोक के बाद हा हा हा लिखकर टाइप करते हैं रादर देन इमोजीज. सो इफ यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे, पार्टी हार्ड, खाओ पियो ऐश करो, कैलोरीज काउंट मत करो, अपनी सेल्फीज खींचो, मुझे भी भेज सकते हो, मुझे अपने इनवाइट्स भी भेज सकते हो, केक्स भी भेज सकते हो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. अपने बर्थडे शाउट आउट भी यहीं पर भेजने हैं और व्हाट्सएप पर अगर भेजना चाहते हो तो 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स बजाते तुम्हारे बर्थडे के उपलक्ष में. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7। जय गुरु।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्डन सिल्वर का रेट अपडेट.
2: जूल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500, $4,500 पर ट्रे उसके साथ. आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड में डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है. गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर गोल्ड बार्स, 1 ounce, 100 grams, किलो बार्स, पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल एट राज ज्वेल्स. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए हिंदुस्तान से, जो अबाउट 15% सस्ता है अमेरिका में गोल्ड की प्राइस, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के था. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: दैट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa, la burga.
1: Mirchi, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
2: बात है सर. आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: I'm so sorry सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: I'm so sorry सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, सोचा तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
11: मॉर्गेज ढूंढने या रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग में खा रहे हैं मात? या प्राइसिंग और ऑफर में कोई बता नहीं रहा है हेल्प का हाथ?
12: नो वरीज, सुनिए रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ. रॉक द रियल एस्टेट फील्ड विद आदर्श लाल. अगर रियल एस्टेट में आपकी इंटरेस्ट है तो ये शो मस्ट है.
11: रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ एवरी ऑल्टरनेट थर्सडे बिटवीन 4 and 5 PM ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो मिर्ची 92.7 पर.
13: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
15: Tera kya hoga Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
15: Ab mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, fresh maal.
18: Say wow! Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes wow.
19: Swag, style aur non-stop dancing ke liye taiyar ho jao.
18: Add it, turn it up, and don't sit now. Just go wow.
19: Wow!
6: Say wow!

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधु और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला इट्स हॉट।
3: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशियों का फल जानने का टाइम।
4: मिर्ची राशि जोन।
3: इट इज यानी मेष राशि। आज लाइफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में जा रही है बॉस। यू आर अहेड ऑफ द गेम सो डोंट वेस्ट एनर्जी प्रूविंग योरसेल्फ टू पीपल स्टिल टाइपिंग विद वन फिंगर। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक। लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, नॉट एवरीवन इज इन योर कंट्रोल एंड ऑनेस्टली दैट्स गुड। आज थोड़ा सा जो होगा देखा जाएगा टाइप की एनर्जी रखो। योर पीस मैटर्स मोर देन एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन। लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मेन कैरेक्टर अलर्ट, द सन एंटर्स योर साइन टुडे सो फ्रेश वाइब्स इनकमिंग। बस एक काम करो, डोंट मेक अ 97 आइटम लाइफ प्लान बिफोर ब्रेकफास्ट। बेबी स्टेप्स, नॉट टेड टॉक। लकी कलर इज लाइम ग्रीन। लकी नंबर इज 29। कैंसर यानी कर्क राशि, टुडे इज लेस हसल कल्चर एंड मोर सॉफ्ट लाइफ, स्लो डाउन यार वाला दिन। फील योर फीलिंग्स, इमोट योर इमोशंस, इवन योर स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट नोज यू नीड इमोशनल रिकवरी टाइम। लकी कलर इज डेजर्ट रोज। लकी नंबर इज 8। लियो यानी कि सिंह राशि, फ्रेंड्स इज इक्वल टू थेरेपी टुडे। लाफ मोर, स्ट्रेस लेस, योर वाइब इज अट्रैक्टिंग पीपल सो मे बी डोंट गोस्ट एवरीवन एंड डिसअपीयर। लकी कलर फॉर यू इज सनसेट येलो। लकी नंबर इज 33। वर्गो यानी कन्या राशि, यू आर केपेबल ऑफ वे मोर देन यू थिंक। स्टॉप प्लेइंग स्मॉल जस्ट बिकॉज यू आर स्केयर्ड ऑफ फेलिंग। कॉन्फिडेंस पहनो टुडे लाइक ओवरड्रेस्ड इंडियंस एट एयरपोर्ट। लकी कलर इज गोल्ड कलर। लकी नंबर इज 11। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन नंबर 1 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: I don't need to tell you. New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
3: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
4: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
5: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
1: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
5: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
1: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्टनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, my people, today's Mirchi Mornings is coming to an end. This is your girl Priscilla signing off with one final piece of Mirchi Dar update. So here's the update. A woman accused of stealing gold jewelry worth over 1.66 crore rupees from a showroom in Ahmedabad, Gujarat, was arrested in Delhi after allegedly going on the run with an accomplice. Police ka kehna hai, Harshida Shetty fled Gujarat with partner in crime Mayur Mali. But plot twist ho gaya unke saath. During their stay at a Delhi hotel, the guy reportedly disappeared with most of the stolen jewelry and left her behind. Matlab chor bhi ab ek dusre ko dhoka dene lage hain pyar mein. Waise to mission successful ho gaya, relationship unsuccessful reh gaya. Aise bahut logo ki life mein hota hai. Lekin honestly, this sounds less like a crime update and more like a rejected Netflix ka thriller. Wo bhi गुजरात दिल्ली एडिशन कॉल्ड गोल्ड डिगर्स गेट इट. अगर तुमने वीडियो नहीं देखा तो देखना, उसकी चोरी का भी वीडियो बड़ा हाईलाइट हुआ था कुछ दिन पहले. एंड ऑन दैट नोट प्रिसिला सेज सारा बाय बाय टू यू. यू बी गुड, हैव अ ग्रेट डे अहेड. खाओ पियो ऐश करो और मिर्ची सुनते रहो. मुझसे कनेक्ट करना है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. Radio Mirchi, it's hot.
2: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 90s की पूरी दुनिया आजकल ना हमारी जेब में है। कैसे? अरे वही तो अब आप सुनने वाले हो।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. अब ये देखो ना यार, एक हैंडीकैम, स्टीरियो, सीडी प्लेयर, टाइपराइटर, कैलकुलेटर, वॉकमैन और भी न जाने कितने ही ऐसे गैजेट्स अब हमारी जेब में रहते हैं जिसे हम फोन कहते हैं। धीरे धीरे ये इनसिक्योर मोबाइल फोन्स ने कब हमारी जिंदगी पर राज करना शुरू कर दिया, ये शिफ्ट तो हमें समझ में ही नहीं आया। बट यही फोन आजकल कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने लगा हमारी लाइफ में। रिसेंटली यू नो व्हाट, आई केम अक्रॉस अ स्टोरी व्हिच सेड कि एक टीनेजर ने अपना एक ऐसा अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया पर जहां पर वो आईफोन लेने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। ही इज कलेक्टिंग फंड्स सो दैट ही कैन बाय एन एक्सपेंसिव फोन, व्हिच इज अ रियलाइजेशन कि फोन मोर देन अमैलगमेशन ऑफ ऑल दीज गैजेट्स जो कि इस्तेमाल की चीजें हैं, ये तो स्टेटस सिंबल सा बन गया है और हम इस स्टेटस सिंबल के गुलाम। हालांकि गैजेट्स को हम यूज करते हैं लेकिन यहाँ तो सोसाइटी के नाम पर गैजेट्स हमें यूज कर रहे हैं। मेरा यही सवाल है आपसे कि आपके लिए एक फोन एक स्टेटस सिंबल है या फिर एक गैजेट? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। एंड अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Gabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
10: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
11: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस योर एंटायर बिजनेस Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
13: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
14: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जो पहली मूवी मैंने थिएटर में देखी थी वो मेरे मतलब की मूवी थी नहीं यार, तड़ी पार था उस मूवी का नाम, मिथुन और पूजा भट्ट की। मुझे कोई मजा नहीं आया पिक्चर में, मैं सो भी गई। लेकिन फिर मैंने ना इस वाली बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। मेरे हिसाब से जो पहली मूवी मैंने थिएटर में देखकर एंजॉय करी थी, दैट वाज जुरासिक पार्क।
0: मिर्ची वीसीआर।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमारी मामी हम सब बच्चों को ट्रीट पर लेकर गई थी और वो हमें प्लाजा में मूवी देखने के लिए लेकर गई थी। बहुत बड़ा थिएटर हुआ करता था वो, अलग बात है कि आज के दौर पे उसकी ऐसी की तैसी हो रखी है। लेकिन आज मैं आपको जुरासिक पार्क के पर्दे वाली बात नहीं बताने वाली, बिहाइंड द पर्दा यानी बिहाइंड द सीन्स वाली बात VCR पे चलेगी। वेल, वो जो जुरासिक पार्क में ये डायनासोर की जो आवाजें हुआ करती थी, ये आपको पता है कैसे बनाई गई थी यार? उस टाइम पर ऐसा थोड़ी था कि YouTube खोला, SFX निकाला और चिपका दिया। क्रिएट की गई थी ये आवाजें, लेकिन इतनी भयानक आवाजें किसने निकाली होंगी? Well, definitely किसी इंसान ने नहीं निकाली थी। इस फिल्म में वो जो टायरेनोसॉरस था उसकी आवाज निकालने के लिए मिक्सचर बनाया गया था आवाजों का। और किस किस की आवाज थी? डॉग की, पेंगुइन की, शेर की, एलिगेटर की, एंड ऑफकोर्स देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट। तो आपको बेबी एलिफेंट सुनते के साथ आई एम श्योर एक ख्याल आया होगा कि जब डायनासोर इस फिल्म के अंदर चिल्लाता है तो एलिफेंट की आवाज भी आती है। वेल, वो इसी वजह से आती है क्योंकि उसमें एलिफेंट की आवाज ही थी। इनफैक्ट अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज आवाजें, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंट वॉज एलिफेंट की आवाज। जुरासिक पार्क के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
10: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
11: It's 11:30 AM, Mirchi Time Check.
6: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
12: Dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda din

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है जब जुरासिक पार्क शूट हो रही थी तो उन डायनासोर्स के बीच एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी थी.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड वेल, हुआ ये था कि जो टीरेक्स बनाया गया था, ऑफ कोर्स दैट वाज अ डमी टीरेक्स एंड नॉट ऑफ कोर्स द रियल टीरेक्स. तो जो टीरेक्स था वो बेचारा था तो एक मशीन. एंड होता ये था कि ओकेजनली वो मैल फंक्शन कर जाया करता था. लेकिन जब पहली बार ये टीरेक्स मैल फंक्शन हुआ, तब सारी टीम और क्रू जो थी मूवी की वो खाना खा रही थी और एकदम से टीरेक्स के चीखने की आवाज आई, जिसकी वजह से हाल ये हुआ कि लोग चिल्लाते हुए भागे और लोगों को लगा कि कुछ हो गया है, ये टीरेक्स जो है ये जिंदा हो गया है, और बहुत ही अफरा तफरी मच गई थी. लेटर ऑन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये एक मैल फंक्शनिंग है एंड दैट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रेन्स. वो टीरेक्स भीगता था, उसकी वजह से उसके अंदर मैल फंक्शनिंग हो गई, क्योंकि था तो वो एक मशीन ही. लेकिन तब भी हाल ये था कि कभी कभी जब टीरेक्स अपने आप बैठे बैठे आवाज निकालने लग जाता था ना बिना चालू किए, तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मेरे सामान में से क्या मिला मुझे? लाइब्रेरी कार्ड।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था यार। इट वॉज लाइक अ यादों की हवा का झोंका जब मुझे मेरे स्कूल लाइब्रेरी का कार्ड मिला। मुझे ना बड़ा इंपॉर्टेंट फील होता था जब मैं एक बुक इशू करवाने के लिए जाया करती थी। मतलब ऐसा होता था कि आई हैड टू शो द कार्ड और फिर उसमें एंट्री होती थी, तो ऐसा लगता था बड़ा भाव मिलता है यार इन सारी चीजों को करके, और बहुत ही बड़ा बड़ा सा फील होता था। वो अलग बात है कि आज बड़ा बड़ा फील होने के बाद, इनफैक्ट फील क्या होने के बाद, बड़ा बड़ा होने के बाद लगता है कि काश हम छोटे ही अच्छे थे। बट वही वाली बात है ना यार, बचपन में शौक था बड़ा होने का तो हो गए। और वो शांति वो जो लाइब्रेरी में थी ना, वो तो खुद शांति सीरियल में भी नहीं थी। ये उसी तरह का सुकून है जो शायद हम पहाड़ों में ढूंढते हैं, लेकिन वहां भी भीड़ मिल जाती है। नाउ आई रियलाइज्ड कि भाई एक लाइब्रेरी गए हुए कितना जमाना हो गया है। लेकिन आज भी अगर मुझे कोई लाइब्रेरी जाना होगा ना, तो सबसे पहले तो मुझे लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो जगह है जो इतनी आउट ऑफ टच हो गई है ना कि इसके वेयर अबाउट्स पता करने पड़ेंगे सबसे पहले तो। जस्ट लाइक एनी अदर स्कूल फ्रेंड जिससे हम स्कूल में और कॉलेज में मिले थे और उसके बाद फिर मुलाकात ही ना हुई, लेकिन फिर भी उसे तो फेसबुक पे भी ढूंढ लिया जा सकता है। लाइब्रेरी के लिए मशक्कत थोड़ी ज्यादा रहेगी। अभी गूगल करके देखती हूँ और सोच रही हूँ कि इसी हफ्ते एक चक्कर लगा आया हूँ। जब भी जाऊंगी ना तो डेफिनेटली आपके साथ इस किस्से को शेयर करूंगी। बाकी आप मुझे बताओ, लास्ट आपका कब जाना हुआ था किसी लाइब्रेरी में? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. ¡Gambana! ¡Burga, burga! ¡La vieja la burga!
0: ¡Mirchi, burga!
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. एक प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
8: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
7: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Pyare Poppins.
2: Yaadon ko chitthi.
1: तुम्हें देखे जमाना हो गया, लेकिन यादें आज भी ताजा है। बचपन की जेबों में खनकती तुम्हारी गोलियों की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। तुम सिर्फ एक टॉफी नहीं थी यार, तुम तो हमारे बचपन की रेनबो थी। और हर रंग में अलग टेस्ट हुआ करता था, हर गोली में अलग कहानी हुआ करती थी। और ये गोलियों के रंग जो थे ना, अगर हम टिपी टिपी टॉप खेल रहे होते थे और तुम जेब में पड़ी होती थी तो इंसान जीत जाए, इतने रंग थे तुम्हारे पास। स्कूल से लौटते वक्त 50 पैसे या 1 रुपए में तुम्हें खरीदना किसी खजाने को पाने जैसा लगता था। दोस्तों के साथ रंग चुनकर खाना और फिर बहस करना कि कौन सा रंग सबसे अच्छा है, और फिर ये पूछना कि जुबान पर तुम्हारा रंग चढ़ा कि नहीं चढ़ा। वो छोटे छोटे पल भी कितने बड़े लगते थे यार उस टाइम पर। तुम्हारे जैसे मीठे दोस्त अब कहाँ मिलते हैं? अब ना वो दुकानदार अंकल है जो मुस्कुराकर पॉपिंस की स्ट्रिप पकड़ाते थे, ना वो बेफिक्री है जो तुम्हें खाते वक्त महसूस होती थी। तुमने सिर्फ मिठास नहीं दी, तुमने रिश्तों को भी रंगीन बनाया। कभी कभी आज भी किसी दुकान में तुम्हारी एक झलक दिख जाती है ना, तो दिल मचल उठता है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो और मैं फिर वही नन्ही सी बच्ची बन गई, इंक्विजिटिव, खुश और तुम्हारे टेस्ट में खोई हुई। थैंक यू पॉपिंस, हमारे बचपन को इतना रंगीन और मीठा बनाने के लिए। और तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा कि तुम्हारी मिठास जो बचपन में चखी थी आजकल रेडियो मिर्ची पर घुल रही हूं। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा मिर्ची सारा के नाम से इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जैसे इंसानों की पर्सनालिटी होती है, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से आवाज में भी एक बात होती है. हर एक आवाज की अपनी ही एक पहचान होती है. एंड सेम इज विद अदनान समी की आवाज. उनकी आवाज बिल्कुल हटके है, जो कहीं पर भी सुनो तो पहचान में आ जाती है. एंड कैसेट के साइड बी का गाना इज सलाम ने इश्क से अदनान समी की आवाज भी.
0: मिर्ची 90s कैसेट.
1: दिल क्या करे, ओए होए, ये गाना इतना प्यारा गाना है ना कि आज भी जब कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा ग्लूमी फील हो रहा होता है, या फिर लो फील हो रहा होता है, दिन बड़ा मजेदार नहीं जा रहा होता है, ये गाना चला देती हूँ मैं. इस गाने की बीट सी इतनी बढ़िया है यार. लेकिन जब इस गाने की बीट से थोड़ा सा खिसक कर आप लिरिक्स की पटरी पर आओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ बीट सी नहीं, इस गाने की लिरिक्स भी बहुत ही कमाल है. इस गाने में सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के सिम्टम्स बता रखे हैं यार. जहां पर ये कहा गया है कि भाई सीली सीली तपती रातों में जलता हूं मैं बरसातों में, डूबा डूबा हर पल यादों में दिल क्या करे. यही तो साइन है मोहब्बत के कि रातें भले ही सीली सीली हो लेकिन तपती रहती हैं. बारिश हो रही है लेकिन इंसान जलता रहता है, क्योंकि यार अकेले बारिश का मजा कहाँ जब तक वो साथ में ना हो. कहते हैं कि अपने में ही खोया रहता हूँ, कहना है कुछ कुछ कहता हूँ, और पेन अजब सा सहता हूँ, दिल क्या करे. और ये जो अगली दो लाइनें हैं ना, ये बिल्कुल सच है. हमें पता नहीं लगता कि कब किसी की आंखों में झांक कर उसकी बातों को सुनते हुए हम उसके प्यार में पड़ जाते हैं. वो अगला इंसान जो है ना, वो हमें पसंद आने लग जाता है. ये एक जादू सा ही होता है यार. और लोग कहते हैं कि किसी की पर्सनालिटी देखने के बाद ही सबको प्यार होता है, फलाना ढिमाका. लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, पर्सनालिटी, लुक्स, कपड़े, फलाना ढिमाका, ये सब देखने से प्यार नहीं होता बॉस. जब आप किसी इंसान से प्यार करते हो और जब आप उस इंसान की आंखों में झांक कर देख लेते हो और आंखों को समझ लेते हो और आपको ये समझ में आ जाता है कि इस इंसान की आंखें मुझसे बातें करती हैं, तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है दिल में. नोटिस तो आपने भी किया होगा. याद आ रहा है उस इंसान का नाम? समझ जाओ, यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ाने की बारी आ चुकी है. अभी के लिए जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पहली मुलाकात हुई थी 1971 की फिल्म गुड्डी के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जया बच्चन तब जया भादुरी थी, फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी और अमिताभ का इसमें एक छोटा सा कैमियो रोल था, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अमिताभ जया को पहले एक मैगजीन में एक प्रिंट एड में देख चुके थे और थोड़ी बहुत ऐसे इंक्वायरी भी की थी कि ये लड़की कौन है, जबकि जया ने अमिताभ को नोटिस किया था जब वो पुणे में FTII में पढ़ रही थी और अमिताभ वहां पर किसी काम से आए थे, तो जया को तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अच्छा, फिर इनकी पहली फिल्म एज लीड एक्टर्स थी 1972 की एक नजर। फिर जब जंजीर फिल्म में इतने लंबे इतनी भारी आवाज वाले इस नए एक्टर के साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी, तब जया बच्चन ने उनके साथ काम किया और वहीं से बात जो है देखिए पक्की हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
1: हाँ बोलिए
2: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात
2: है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: बता रहा सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर, बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: पागल के दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे?
2: अब तो फंस गए सर।
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
10: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर in demand healthcare careers.
11: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

राकेश रोशन साहब की एज डायरेक्टर जब पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी तब उन्होंने एक मन्नत मांगी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो ये फिल्म थी 1987 की खुद गर्ल्स और उनकी मन्नत ये थी कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। जी नेचुरल हेयर लॉस को कवर करने का अच्छा तरीका नहीं नहीं, उनका नेचुरल हेयर लॉस नहीं था, उन्होंने वाकई में ऐसी मन्नत मांगी थी। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और फिल्म हो गई सुपरहिट, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से घबरा गए, कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे शेव कर लें। लेकिन जब इनकी अगली फिल्म शुरू होने वाली थी ना 1988 की खून भरी मांग, तब उनको एक रात पहले नींद नहीं आई कि यार मैंने एक मन्नत मांगी थी, एक प्रॉमिस किया था ऊपर वाले से, वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुबह सुबह जो सबसे पहला काम कराया वो ये कि बाबर को बुलवा के और अपना सर मुंडवा लिया। उनका ये लुक सबको इतना पसंद आया, वो इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने फिर वैसा ही लुक रख दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: मॉर्गेज ढूंढने या रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग में खा रहे हैं मात, या प्राइसिंग और ऑफर में कोई बता नहीं रहा है हेल्प का हाथ?
4: नो वरीज, सुनिए रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ. रॉक द रियल एस्टेट फील्ड विद आदर्श लाल. अगर रियल एस्टेट में आपकी इंटरेस्ट है तो ये शो मस्ट है.
3: रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ एवरी ऑल्टरनेट थर्सडे बिटवीन 4 एंड 5 पीएम ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो मिर्ची 92.7 पर.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Listener MA, back to back gana sunega.
8: Back to back gana sunega.
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
9: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu. Only.

हाँ, नाम लिख लिया। बिन्कू

0: वो कौन सा पहला गाना था जो सरोज खान ने श्रीदेवी के लिए कोरियोग्राफ किया था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सरोज खान ने शेयर किया था, सुनिए।
1: एक कैमरामैन है अकबर, एक दिन वो मेरे घर पे आए और बोले जाओ हिम्मत वाला पिक्चर देखो, क्या डांस है उसमें, क्या हीरोइन नाची है। मैं बोली सच्ची? बोले देखने लायक है, जा जा देख। और मैं जाके हिम्मत वाला पिक्चर देखी। तो मैं बोली, मैंने कहा काश मुझे भी कोई ऐसी डांसर मिले तो मैं अपना डांस दिखाऊं। घर आए तो मेरे को फोन आया सुभाष जी का, बोले सरोज गाना तैयार है कर्मा के लिए, गाना तैयार है आके ले ले और प्रैक्टिस कर ले, कश्मीर में शूटिंग है। मैंने कहा सुभाष जी आपने बताया नहीं हीरोइन किसको लिया? तो बोले श्रीदेवी को। तो मेरे हाथ से फोन गिर गया। तो मैं बोली श्रीदेवी मैं अब भी उसका गाना देख के आ रही, सुभाष जी वो नाचेगी मेरे साथ, क्यों नहीं नाचेगी।
0: तो ये शुरुआत कर्मा से हुई, उसके बाद फिर चालबाज, चांदनी, मिस्टर इंडिया, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1971 में एक फिल्म आई थी पराया धन, जिसका सब्जेक्ट, जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें हीरो थे न्यू कमर राकेश रोशन। हालांकि इसमें हीरो का कोई खास रोल नहीं था, मेन रोल हीरोइन का था। हीरोइन थी हेमा मालिनी, वो भी उस टाइम पे रिलेटिवली नई थी। इसमें बलराज साहनी साहब भी थे, लेकिन ये फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चली। क्यों? क्योंकि उस टाइम राजेश खन्ना का पागलपन सवार था लोगों पर। राजेश खन्ना आराधना फिल्म के बाद इतने हिट हो गए थे, ऐसे सेंसेशनल हो गए थे कि उनकी जो फिल्म आ रही थी, अच्छी बुरी गुड एवरेज, लोग देखे जा रहे थे, उन्हीं को हिट कराए जा रहे थे। उस चक्कर में ये जो और अच्छी फिल्में साइड साइड में आ रही थी ना, वो इतनी नहीं चल पा रही थी। ये फिल्म चली थी, बट जितना सक्सेस आई थिंक ये डिजर्व करती थी, उतना इसको उस टाइम पे नहीं मिला। इसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, तो इसी फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

बहन भाइयों, 1985 का सुपरहिट गीत जो गीत माला पर पायदान नंबर एक पर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना सुन साहिबा सुन। मिड 80s में दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। लेकिन आपको पता है इस गाने की ट्यून ओरिजिनली मिड 50s में कंपोज हुई थी। जी, शंकर जयकिशन ने ये ट्यून कंपोज की थी अजंता नाम की मूवी के गाने के लिए, जो फिल्म बाद में नहीं बनी थी। राज कपूर साहब की ही वो फिल्म थी, लेकिन ये ट्यून अनयूज्ड पड़ी हुई थी। तो रविंद्र जैन जब राम तेरी गंगा मैली का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, इस ट्यून को इस्तेमाल किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। हसरत जयपुरी साहब ने ये गाना लिखा, लता मंगेशकर ने गाया और ये सुपर डुपर हिट हो गया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: तो मैं आपको, अरे मैडम,
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
4: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? यार नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

1987 की फिल्म ईमानदार का एक बहुत पॉपुलर गाना किशोर कुमार की आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिल्म में जो वर्जन रखा गया था वो उनकी आवाज वाला नहीं था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना था और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। तेरा ही नाम लिखा रखा है या तेरा ही दर्द छुपा रखा है, आई थिंक दोनों था। एनीवे, सो किशोर कुमार की आवाज में भी ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फाइनल वर्जन सुरेश वाडकर की आवाज वाला रखा गया था। जिसका रीजन ये सुनने में आता है कि ये इस फिल्म में गाना संजय दत्त पे पिक्चराइज था, एंड संजय दत्त उस टाइम काफी नए थे और सुरेश वाडकर भी उस टाइम नए थे, तो उनकी आवाज संजय दत्त पे ज्यादा सूट कर रही थी एज कम्पेयर टू किशोर कुमार, बिकॉज किशोर कुमार की आवाज तब तक काफी मच्योर, काफी पॉपुलर हो चुकी थी। सो टू गिव दैट नॉवेल्टी फैक्टर, सुरेश वाडकर की आवाज वाला जो वर्जन है वो फिल्म में रखा गया। सुरेश वाडकर के साथ इसमें आशा भोसले की आवाज भी है, प्रकाश मेहरा ने ये गाना लिखा है, कम्पोज्ड बाय कल्याण जी आनंद जी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
7: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स मरियु स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इज़लिन.
8: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
9: Batting तो काफी सारे करते हैं. विराट एक ही होता है.
10: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है.
12: एक ही होता है.
9: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू. Only on

0: गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये तो आप जानते हैं ना कि राजेश रोशन ऋतिक रोशन के चाचू हैं। और कुछ टाइम पहले इनकी फैमिली पे जब एक डॉक्यूमेंट्री आई थी रोशन्स करके, उसके लॉन्च पे ना ऋतिक रोशन ने राजेश रोशन साहब के कंपोज किए हुए गाने के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी, सुनिए।
1: वो याराना फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं। तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ। वो मेरी जिंदगी सवारी मुझको

0: मैंने तो खुदा माना।
1: आहा, बहुत अच्छा गाया, आगे से नहीं गाना। नहीं, अच्छा गाया, अच्छा गाया। तो यही गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

रंजीत साहब की एज विलन शुरुआत हुई थी 1970 की फिल्म सावन भादो से। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनको इमेंस पॉपुलैरिटी मिली 1971 की फिल्म शर्मीली से, जिसमें उनका बहुत ही ढेंटड़न टाइप का नेगेटिव रोल था। लेकिन इस फिल्म के प्रीमियर पे ना बहुत ही फनी चीज हुई थी। रंजीत साहब की टिपिकल पंजाबी फैमिली, उनका पूरा टब्बर जो है वो फिल्म के प्रीमियर पे आया था। उनका इतना नेगेटिव रोल देख के ना वो इतने अपसेट हो गए कि बीच फिल्म में से उठ के चले गए। थोड़ी देर बाद जब रंजीत साहब वापस घर गए तो पूरा परिवार गुस्से में बैठा हुआ था उनकी क्लास लेने के लिए कि ये तू की करदा पे है, ये तेरा काम है। तो इस तरह से उनके विलन वाले करियर की शुरुआत हुई थी। कितनी क्यूट होती है फैमिलीज भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 3 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Indie Top 10
3: Kanika ke saath on Mirchi.
4: Mirchi sun rahe hain aap. Ab bari hai hafte ke hottest pop countdown ki. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 gaano mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. All this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki. Gaana number 10 par ek nayi entry hai. Gaane ka naam hai Chori. Mika Singh and Daya the rapper ka hai gaana. Uske baad Mitta Roar ka Shisha pichle hafte se 4 position niche drop hua hai. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन उन्हीं के लिरिक्स मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
5: नंबर 10.
6: छोरी करती जंप छोरे ने दे दिया पंप रे फुलन दे भी फूल की देखो हवा में उड़ती

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: मिर्ची पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए उस पे, गाने के बारे में कॉन्वर्सेशंस करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Vaaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। कनेक्ट इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनेक्ट, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: 10. Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi murga.
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार जरा ये भी ये बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी, रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s एंड 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया, तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 years, कॉन्टेंट डिस्कवरी का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है, एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कॉन्टेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे। एंड द न्यू वेव ऑफ पॉप स्टार्स आर दोज जो सोशल मीडिया के जरिए अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और सॉन्ग राइटिंग के थ्रू अपना म्यूजिक कनेक्शन बढ़ाते हैं। वन ऑफ सच आर्टिस्ट विच आई फील इज डूइंग सो वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल इज कॉल्ड जीनी। देहरादून की एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर, लेट नाइट अपलोड्स, बहुत ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग, वो अपने फैंस के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है। इफ यू लुक एट हर सोशल मीडिया, यू विल सी दैट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं। दैट जीनी ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू, इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती है एंड फैंस आर इन्वॉल्वड इन इट। उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया, व्हिच इज अबाउट लॉस, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस। जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी, शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उसे ओवरकम नहीं कर पाए हो, शेयर योर स्टोरीज विद मी। एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स, उनके कॉमेंट्स में अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी। दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज। वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के, ड्रम्स बजा के, सुपर स्टार की तरह नहीं होता है, वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है। उनके इंटरव्यूज में, उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है, दैट शी वांट्स अ म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन, एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड। दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल, कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है। शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन, क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज, सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज, एंड शी हेडलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापालूज़ा अर्ली दिस ईयर। नाम याद रखो, नाम है जीनी। रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ, आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका विच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो। जीनी एट हर बेस्ट, दिस इज फीका फीका प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Man oh man, word by word, it feels that she is really feeling her song. Jeannie ki awaaz unki composition, gaane ka naam hai Fika. Ye gaane sunte hi lagta hai that Jeannie is not just another independent artist. She's one of those artists of this generation that wants to grow with the new audience. At RJ Kanik on Instagram par aao, koi aise naye independent artist hain jo aapne discover kare hain, humse aage share karo and we might feature them and their songs next week. Now back to the countdown, agle wale gaane की बारी. दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: इट्स 3:30 PM. मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
8: गाना इंडी टॉप 10
9: कनिका के साथ On Mirchi.
10: Mirchi sun rahe aap. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jaye. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani hai, bindas aake hit me up. I truly believe that gaane share karne se pyar padta hai. Aaj hum independent pop music ke bare mein jab baat karte hain, pop stars ke bare mein baat karte hain, all of them have been influenced and inspired by 90s and 2000s ka indie pop. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स. आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए. और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है. नीडलेस टू से दैट इंडी पॉप एरा वॉज द गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूजिक. इसीलिए इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. ऑफ कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी वाज कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात. कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है. आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस. प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करिए. द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन. कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस. आई रिमेम्बर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट इवन लाइंग, आज भी इस गाने को सुन के मेरे को बटरफ्लाईज आती हैं. समथिंग इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो, एक वो वॉर्म्थ है, एक फेमिलियरिटी है, ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना ये गाना. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आई एम गोइंग टू राइड ऑन द डेलुलु एक्सप्रेस बाबुल सुप्रियो की आवाज में. दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

आई विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ दिस सॉन्ग मेक्स मी फील. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग साउंड्स लाइक टू मी. बाबुल सुप्रियो की आवाज में दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. अल्टीमेट लव बेंडर है ये गाना. एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, हमारे साथ 90s एंड 2000s के ऐसे गाने शेयर करो विच यू थिंक स्टिल हिट्स होम. माय साउंड प्रोड्यूसर अश्काय और मैं बहुत बड़े फैन हैं आपके और आपके रिकमेंडेशंस के, एंड यू've हेल्प्ड अस मेक दिस सेगमेंट इनटू सच अ सक्सेस. सो कोई भी रिकमेंडेशंस हो बिंदास आके हिट मी अप. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौड़ का गाना बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: गाना का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपको ऑन द शो विच इज कॉल्ड गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, जाओ मुझे फॉलो करो. मेरा हैंडल इज @RJKanaka. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दैट न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. मिका सिंह दया द रैपर का छोरी अनया नवेला डेब्यू ऑन गाना नंबर 10. Then गाना नंबर 9 पर मिट्टी रोर का शीशा.
2: तेरी आंखें पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर.
0: गुरु रंधावा का वोग दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. गाना नंबर 7 पर इस आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर.
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना.
0: डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3.
4: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में.
0: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 2.
5: मुन्ने सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
0: बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. इसका मतलब वी हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर 1. 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, पर

बीच में बैठकर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़े कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है, तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sumanji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: मॉर्गेज ढूंढने या रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग में खा रहे हैं मात, या प्राइसिंग और ऑफर में कोई बता नहीं रहा है हेल्प का हाथ?
10: No worries. सुनिए रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ। Rock the real estate field with Adarsh Lal. अगर real estate में आपकी interest है तो ये show must है।
9: Real estate की बात डील मेकर आदर्श के साथ every alternate Thursday between 4 and 5 p.m. only on your favorite Radio Mirchi 92.7 पर।
11: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मजे की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सूजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं। टेल मी ऑन इंस्टा, तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Listener MA, back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, एक ऐसा गाना, एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाले किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपर हिट एल्बम का सुपर हिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शाम तक लाइक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहेबान, मेहरबान, कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मजे की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में, घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी, तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा। और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विथ अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना व्हिच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do non-donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना तो लगता है कि यार एक ही सफर को दो नजरियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए

सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, वो बजाते हैं यहाँ पर। फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
2: बात है सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन.
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो.
3: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad chakhti. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
12: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
13: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab, mirchi ka.
16: Radio Mirchi, it's hot.

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और एक रियल वर्ल्ड वाइब ये होता है कि कभी मार्केट तो अपबीट होता है या कभी थोड़ा कॉशियस। हेडलाइंस तो चेंज होती रहती है, पॉलिसीज शिफ्ट होती रहती है, और इकोनॉमिक्स का मूड कभी क्लियर स्काई, कभी क्लाउडी तो कभी स्नो। ऐसे मिक्स मार्केट में ना लोग भी पॉज ले लेते हैं, सोचते हैं कि क्या यही सही टाइम है घर खरीदने का, वेट करें या मूव करें। पर हर चेंजिंग इकोनॉमी के बीच अपॉर्चुनिटीज भी क्वाइटली शेप हो रही होती है। स्मार्ट डिसीजंस पैनिक से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं, और इसी क्लैरिटी के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिचेल लिसनर्स, वंस अगेन योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। लेस हिट देन लास्ट फ्यू डेज, एंड टुडे द यूएस मार्केट्स राइज एंड मॉर्गेज रेट्स गॉट अ लिटिल बेटर। मॉर्गेज रेट्स हैव बीन फ्लक्चुएटिंग ओवर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, बट ऑल द चेंजेस हैव बीन स्मॉल। स्टैग्नेंट रेट्स मे लीव यू वंडरिंग, इज इट अ गुड टाइम टू बाय अ हाउस? In short, no. You probably shouldn't wait to buy a home until mortgage rates drop more drastically. Mortgage rates are just one part of the affordability equation. You also have to consider home prices, a factor of housing supply and demand. The current housing market is in a crunch. To put it simply, buyers outnumber homes for sale, especially homes in price ranges as is accessible to first-time home buyers. So friends, buying your dream home... Advice is free. Pre-approval is free. Don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.375%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. 5 important tips that you should consider buying your dream home. Number 1, affordability. Number 2, proximity to school. Number 3, safety. Number 4, demographics and growth. And the last is access. So friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain. Par Bachchan, ek hi hota hai.
7: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
4: एक ही होता है
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज्यादा चाय पीता है और सबसे ज्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिडवीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिडवीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: ओ नो!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रांसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

मूवी हो या मूड स्विंग, डीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 6 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Sham Shandar. Let's do not donkey. Have a funky time.
3: This hour is brought to you by Raj Jewels.
2: Sham Shandar. Let's do not donkey. Have a funky time.
4: यार जब जब श्रेया घोषाल और सोनू निगम साथ आया है ना तब तब धमाका ही हुआ है म्यूजिक में। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कितने गाने हैं जो श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने साथ में गाए हैं, फिर चाहे वो यार एक दूसरे के गानों में एकदम छोटा सा पार्ट ही गाना ही क्यों ना हो, बट एवरी सॉन्ग हैज बिन मैजिकल। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ अमेजिंग गानों के बारे में जो इन दोनों ने गाए हैं। एंड द फर्स्ट वन इन माई लिस्ट इज यार दिल डूबा, जो कि एक मतलब आई वोंट से इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, बट इट्स दैट वन अमेजिंग सॉन्ग जिसके मतलब बस मन करता है कि गाने को सुनते ही जाओ। एंड यू कैन नॉट स्टॉप, इट्स दैट वन अमेजिंग सॉन्ग जिसके मतलब बस मन करता है कि गाने को सुनते ही जाओ एंड यू कैन नॉट स्टॉप ग्रूविंग ऑन दिस सॉन्ग स्पेशली।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa, la burka. Milchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान।
2: कितने दिन तक?
3: ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो।
2: 4?
3: हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?

0: कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप।
1: अच्छा।
0: 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
0: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है?
1: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
0: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
0: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा तू?
0: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का।
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Listener mein. बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: की टाइम।
1: श्रेया घोषाल और सोनू निगम जैसी सुरीली आवाज जब साथ में आती है तो म्यूजिक रोमांटिक मास्टरपीस तो बनेगा ही। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है कि यार श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने जब भी साथ में गाना गाया है तो खूबसूरती वाले गाने, मतलब ऐसे गाने बजे हैं, ऐसे गाने हमको सुनने मिले हैं जो यार मतलब उनको कैटेगराइज ही मास्टरपीस में कर देना चाहिए। तो एक जो रोमांटिक मेलोडी है जो इन दोनों ने साथ में गाई है, दैट इज़ फ्रॉम द मूवी कुर्बान, अगेन शुक्र अल्लाह इज़ द सॉन्ग। यार इतना ब्यूटीफुल गाना है एंड यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन एनी अदर सिंगर सिंगिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, स्पेशली दोनों की जो जुगलबंदी इस गाने में, दैट इज़ एब्सोल्युटली मार्वेलस। तो चलिए सुनते हैं इन दोनों का शुक्र अल्लाह ये गाना फ्रॉम द मूवी कुर्बान। एंड आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स विच इज संग बाय श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। टेल मी ऑन RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए शुक्र अल्लाह, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
6: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स। कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's do not donkey. Have a funky time.
2: एक दूसरे के गाने में एक छोटा सा कैमियो भी ना मैजिकल बन जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है श्रेया घोषाल और सोनू निगम के बारे में। वैसे तो यार ये जो गाना है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूं, दैट सॉन्ग इज एंटायरली संग बाय सोनू निगम, बट एक छोटा सा पार्ट इसमें श्रेया घोषाल का है। एंड वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन एनीबडी एल्स सिंगिंग दैट वन स्मॉल पार्ट, क्योंकि यार इन दोनों का जो आवाज़ है वो, मतलब जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस इसको मिल जाता है, इट क्रिएट्स अ रोमांटिक मेलोडी। मतलब और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यस, दैट सॉन्ग इज़ फ्रॉम ओम शांति ओम मैं अगर कहूँ। तो चलिए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में मैं अगर कहूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी इन दोनों का कोई गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तब तक के लिए ओम शांति ओम का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वंस अगेन मंडे की इस खूबसूरत शाम में, जहां यार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं सोनू और श्रेया के धमाकेदार गानों की। लेकिन यार एक जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, दैट इज नॉट जस्ट सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, जस्ट देयर डू इट, बट यार इसमें ऑलमोस्ट 6 सिंगर्स हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स, क्योंकि ये गाना पहले तो यार इश्क पे बनाया गया है। 6 सिंगर्स इस गाने में हैं और ये जो गाना है बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है। मतलब ना सिर्फ ये ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन को एक कवाली स्टाइल में गाया गया है बट एक मॉडर्न ट्विस्ट भी दिया गया है। मतलब सोचिए अगर 6 फ्लेवर्स एक ही बिरयानी में आ जाए तो हो क्या मजा आ जाए। तो वैसा ही एक ही गाने में 6 सिंगर्स, जैसे कि सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, शान, साधना सरगम, सुचेता भट्टाचार्य, इतने सारे सिंगर्स एक साथ थे, प्लस एडिशन शंकर महादेवन भी थे एज पार्ट ऑफ कोरस जिन्होंने गाना कंपोज किया है। जी हाँ, बात हो रही है सलामे इश्क गाने की, उसका टाइटल ट्रैक की बात हो रही है जो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि ये गाना रिक्वेस्ट किया है कृति ने, हु इज फ्रॉम जर्सी सिटी। तो चलिए कृति के लिए प्ले करते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल का और भी बहुत सारे सिंगर्स का ये जो ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग है सलामे इश्क, टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सोनू एंड श्रेया सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सलामे इश्क का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री की धमाकेदार जोड़ी की। जी हां, श्रेया घोषाल और सोनू निगम इज वन दैट फेवरेट जोड़ी ऑफ आर्स, जिनके गाने ना, जो डुएट सॉन्ग्स स्पेशली, बस सुनने का ही मन करता रहता है। एंड वन रिक्वेस्ट जो आप ही से आई है, इट्स फ्रॉम प्रणीता, और प्रणीता रहती है एडिसन में, एंड शी हैज रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग पीयू बोले फ्रॉम द मूवी परिणीता, जो 2005 में रिलीज हुई थी। और प्रणीता को ये मूवी इसलिए पसंद है क्योंकि परिणीता साउंड्स वेरी वेरी क्लोज टू प्रणीता, और उसको लगता था कि ये परिणीता है ही नहीं, ये प्रणीता नाम की मूवी है, इसलिए ये जो गाना है पीयू बोले इस मूवी का, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे एक खास बात इस गाने की ये है कि ये गाना जब शूट किया गया था तो एक सिंगल शॉट में पूरा गाना शूट किया गया था। जी हाँ, कोलकाता स्टाइल हवेली सेट थी में विद्या बालन थी, और उनका जो लुक था मीना कुमारी से इंस्पायर था। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय शंतनु मोइत्रा एंड संग बाय नन अदर देन श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। तो चलिए सुनते हैं पीयू बोले फ्रॉम परिणीता। और दोस्तों, अगर आपके भी कोई फेवरेट सॉन्ग्स है फ्रॉम दिस धमाकेदार जोड़ी श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए परिणीता का पीयू बोली, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Rambala! ¡Murga, murga! ¡La vida para la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A, 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
9: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

दोस्तों, कभी कभी कुछ गाने ना उसके म्यूजिक की वजह से पॉपुलर हो जाते हैं, कभी कभी कुछ गाने उसके सिंगर्स की वजह से, और कभी कभी कुछ उसके पिक्चराइजेशन की वजह से। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और आज बातें हो रही है बॉलीवुड के म्यूजिक डुओ, वन ऑफ द मोस्ट हिट म्यूजिक डुओ श्रेया घोषाल और सोनू निगम के गानों के बारे में। और एक बहुत ही खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट आई है। अमित जी जो कि रहते हैं एडिसन में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी वजीर तेरे बिन। जी हाँ, ये गाना फिर एक बार शंतनु मोइत्रा ने कंपोज किया है, जिन्होंने परिणीता वाला गाना भी कंपोज किया था पीयू बोले। और यार ये जो गाना है इसमें मतलब म्यूजिक तो अमेजिंग है ही, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज भी अमेजिंग है, लेकिन यार जिस तरह से ये गाना फरमाया गया है ना, मतलब हर एक जो इस गाने का फ्रेम है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सॉफ्ट टोन्ड, वार्म और एक पोएटिक फील देता है। जैसे कि मान लो किसी मेमोरी में से निकाला गया हो ये पूरा गाना, और हर एक फ्रेम इसका एक पेंटिंग जैसा दिखता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है इस गाने का। तेरे बिन सुनते हैं अमित जी की रिक्वेस्ट पर फ्रॉम द मूवी वजीर, यार ऑफ कोर्स सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, आपका भी कोई फेवरेट गाना है सोनू निगम और श्रेया घोषाल का तो मुझे जल्दी से बताइए। टेल मी ऑन RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI जो है मेरा इंस्टाग्राम ID। और फिलहाल सुनते हैं वजीर का ये खूबसूरत गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Did you know many communities across NJ12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ12. Rooted in NJ12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election Day, June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों आज का ऑडियंस सिंपल नहीं है, ट्रेलर देखते ही रिव्यू रेडी होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इसीलिए आज बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी। मतलब हमने देखा है बिग बजट होने से फिल्म हिट नहीं होने वाली या फिर छोटी फिल्म भी फ्लॉप नहीं होने वाली। ऑडियंस तो अब स्टोरी देखते हैं, ऑथेंटिसिटी फील करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इज इट वर्थ माई टाइम टू गो टू द थिएटर और नॉट। और इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, कितने भी बड़े नाम हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सिर्फ बड़ा मत बनाओ, दिल तक पहुंचाओ, यही ऑडियंस का कहना है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड को अब क्या इंप्रूव करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, कास्टिंग या मार्केटिंग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।